ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

अस्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासी वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ गुरवे सर्वलोकानां

0: ऋषीदता उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः एष तेयो निर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः इन्द्रामरुत्व इह पाहि सोमं यथा आशार्याते अपि वस्सु तस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्नाविवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते मरुत्वन्तं वृषभं वा वृधानमकावारिन्दिव्यज्ञशासमिन्द्रम् विश्वासाहमवासे नूतानायोग्रज्ञसाहोदामिहतज्ञहुवेम उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते उपयामगृहीतोऽसि मरुता ओजासे त्वा सजोषा इन्द्रसगा नो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रः शूरविद्वान् जहि शत्रुज्ञरपमृधो नुदस्वाथाभायङ्कृणिः विश्वतो नः उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा त एष तेयो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते महाँ इन्द्रो नृवदाचर्ष निप्रा उतद्विबर्हा अमिनस्सोभिः अस्मद्यग्वा वृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष तेयो निर्महेन्द्राय त्वा महाँ इन्द्रो य ओजासा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष तेयो निर्महेन्द्राय त्वा इति सप्तमोऽध्यायः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to shaivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

नमस्तुभ्यं त्रिलोकीनन्दनाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय वसुदेवाय ते नमः। संकर्षणाय

विष्टरश्रवसे तुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः। नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः। ब्रह्मगाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्त्वीश तपसा फलदायिने। स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुतिसंप्रीतचेतसे। श्रुत्याचार प्रसन्नाय श्रुत्या

याच्य मुक्त्यर्थमीशानः योगिभिर्योगवित्तमये हृत्पुण्डरीकविवरे योगिनां त्वं।

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्ण प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय।

0: रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढा मेऽद्य वर्धमाना भवत्विति। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to shivam.org radio, the 24/7 spiritual channel from shivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम ओम ओम। आदिगुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकमसत् कल्प

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की व्याख्या के अंतर्गत सातवें स्तोत्र की व्याख्या है। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। प्रसंग चल रहा है प्रबोध समय या प्रत्यविज्ञायते, सोकर जगने के बाद मनुष्य प्रत्यविज्ञा करता है। ये प्रत्यविज्ञान के बल से ये सिद्ध होता है कि जानने वाला व्यक्ति एक ही है, साक्षी एक है, आत्मा एक है और नित्य है। प्रश्न उठा कि ये प्रत्यविज्ञा क्या है, किसको कहते हैं प्रत्यविज्ञा और प्रत्यविज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो प्रत्यविज्ञान का अर्थ और प्रत्यविज्ञान का प्रयोजन, इस दो बात को स्पष्ट करने के लिए ये सातवां श्लोक आरंभ हुआ है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि प्रत्यविज्ञा बलात् आत्मा स्थायी निर्धार्यते, यदि प्रत्यविज्ञान के बल से यदि आत्मा को स्थायी नित्य और एक निश्चय करते हो तो ये बताओ कि कानामा प्रत्यविज्ञेसः, ये प्रत्यविज्ञा क्या है, इसको स्पष्ट कर दो। किं वा तस्याः प्रयोजनम्, और इस प्रत्यविज्ञा का मूल प्रयोजन क्या है, इसे क्या सिद्ध करना चाहते हो। क्योंकि प्रमाण के द्वारा विचार करने वाले वैचारिक लोग, विचारकर्ता प्रत्यविज्ञा को किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेते। आप लोगों ने कई बार सुना है कि प्रमाण वेदांत सम्मत, न्याय वैशेषिक सम्मत प्रमाण छह हैं, तो इन छह में से कोई केवल एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके अलावा और प्रमाण को मानता नहीं। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं, प्रमा ज्ञान का साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और जिससे यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो कुछ लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, विषयार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। विषय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है, सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में इंद्रिय और विषय के बीच में कोई व्यवधान न हो, जैसे कान और शब्द के बीच में व्यवधान न हो, वह कान उस शब्द को प्रकाशित करेगा, ग्रहण करेगा, जानेगा। इसलिए शब्द को ग्रहण करने का जो प्रमाण है वह श्रोत्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। कान से सुनकर ये शब्द है ये निश्चय होगा, तो इसमें कान ही प्रमाण यानी श्रोत्रेन्द्रिय प्रमाण है। इसी प्रकार के चक्षु से रूप आदि का ग्रहण जो होता है वो भी सन्निकर्ष से ही होगा। सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में कोई व्यवधान न हो। तो आंख और पदार्थों के बीच में कोई व्यवधान न हो,
तब वह आंख उस पदार्थ को स्पष्ट ग्रहण करती है। तो आंख के द्वारा जो पदार्थ का इदमितम ये जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार के सन्निकर्ष रस और जिह्वा, अव्यवहितता रस और जिह्वा के जो सन्निकर्ष है उसके द्वारा इदमितम जो ज्ञान होगा कि ये ऐसा है, मधुर है, लवण है, कषाय है, कटु है, तिक्त है इत्यादि, ये रासन प्रत्यक्ष होगा, रसन इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा। ऐसे अन्य इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का ग्रहण होकर पदार्थों का ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत से लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, ये प्रमाण से सारा लोक व्यवहार चल जाएगा और बहुत प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, और लौकिक व्यवहार में लगभग 99% काम इसी प्रत्यक्ष से ही चलता है, लेकिन 100% काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 100% चल जाएगा, तो कहीं कहीं नहीं चलता है, तब फिर प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान करना पड़ता है, जो कि इंद्रिय और पदार्थ का ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष नहीं है, फिर भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अनुमान करते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, उस पहाड़ में जरूर अग्नि है, तुम कैसे निश्चय कर रहे हो? अग्नि देखकर? बोले देख तो नहीं रहे, फिर कैसे निश्चय कर रहे हो? धुएं को देखकर। तो धुएं को देखकर तो धुएं का निश्चय होगा, अग्नि का तो होगा नहीं, क्योंकि जो देखोगे वही निश्चय होगा। देखा तुमने धुएं को और निश्चय कर रहे हो अग्नि को, ये कैसे हो गया? साचर्य नियम के द्वारा व्याप्ति स्मरण करके निश्चय होता है कि अग्नि प्रत्यक्ष न होने पर भी अग्नि का ज्ञान होता है। कैसे होगा? तो बोले अनुमान से हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति यह है कि जहां जहां अग्नि है वहां धुआं रहता है, व्यक्ति यह है। इसीलिए यहां धुआं है इसका मतलब अग्नि जरूर है, प्रत्यक्ष न दिखता हुआ भी अग्नि का निश्चय हो गया है, ये अनुमान जन्य ज्ञान है। इसी प्रकार के उपमा जन्य ज्ञान होता है, गो सदृश गवय, गवय कैसे होता है? गवय एक पशु विशेष है, नील गाय को ही गवय कहते हैं, गवय एक पशु विशेष है, लेकिन गवय का ज्ञान कैसे होगा? तो बताया कि गाय जैसा ही होता है, तो गो सदृश गवय, तो गाय को तो उसने देख रखा था प्रत्यक्ष, लेकिन गवय को देखा नहीं था। अब कालांतर में वह जंगल में गया और गाय जैसा ही एक पशु देखा, तो उसको स्मृति आई, यह उपमा, गाय ऐसा है, गुरु ने कहा था गाय जैसा ही होता है गवय, तो वहां गवय देखने पर उसको यह उपमा स्मरण हो आया कि यह गवय यानी नील गाय है, उसको पक्का निश्चय हो गया है, ये उपमा ज्ञान कहते हैं, गाय गो सदृश गवय इत्यादि। शब्द प्रमाण है, किसी के द्वारा कोई कह दिया है, आप तो वाक्य ने कहा, जिस पर हमको पूरा श्रद्धा है विश्वास है, उसने कहा कि ये ऐसा है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे हमारी मां ये कह देती है कि ये तेरा बाप है तो हम मान लेते हैं, वहां अनुमान काम नहीं आएगा। आप अनुमान करने लग जाओगे तो वह अनुमान व्यक्ति दोष से दूषित हो जाएगा। किसी पुरुष के बिना बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो ये पुरुष है इसलिए ये मेरा बाप है, तो जिसको भी तुम अपना बाप सिद्ध कर जाओगे, तो क्योंकि प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा।

से बाप प्रत्यक्ष होता था, ये मेरा बाप है। कब होगा तो मां कहेगी। इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अर्थापत्ति माने ऐसा नहीं है फिर भी यह है, तो इसका मतलब यह है। तीनों देवदत्ता दीवान भूंगते, देवदत्ता बड़ा मोटा है लेकिन ख्याल रखना दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि वो रात को खाता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, होता तो मिलता है, इसीलिए नहीं मिल रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि यह नहीं है, ये अनुपलब्धि प्रमाण। खरगोश के सिंह नहीं होते, इसमें क्या प्रमाण है? अनुपलब्धि प्रमाण है। खरगोश का सिंह होता तो उपलब्ध होता, किसी न किसी को होता, दुनिया में कहीं भी किसी को भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि खरगोश का सिंह होता ही नहीं। अनुपलब्धि आदि प्रमाण, अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभाव भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। दार्शनिकों ने, विचारकों ने 6 प्रमाण माने हैं, लेकिन इन 6 प्रमाणों के अंतर्गत ये प्रत्यभिज्ञा एक भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का नाम है कि अनुमान का नाम है कि उपमा का नाम है कि आप्तवाक्य का नाम है कि शब्द प्रमाण का नाम है कि अनुपलब्धि है कि अर्थापत्ति है, इन 6 में से एक भी। तो आपने प्रतिविज्ञा से ज्ञान होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा एक सिद्ध होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा नित्य सिद्ध होता है, ये जो कहा है प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रतिविज्ञा को क्यों माना जा रहा है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, प्रत्यभिज्ञान के बिना अनुमान भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना प्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना उपमा भी सिद्ध नहीं होगा। इन सब के पीछे एक वस्तु काम करता है, वो ही है प्रत्यभिज्ञान। ये वेदांत का रहस्यमय शब्द है प्रत्यभिज्ञान। जैसे 2 प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता सिद्ध करनी हो तो प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 15 वर्ष पहले जो पेड़ किसी स्थान में आपने देखा था, उस समय जिस समय आपने देखा और जाना, पूछा और आपको ज्ञान हुआ कि ये वटवृक्ष है, 15 वर्ष पहले वो वटवृक्ष का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं? अब 15 वर्ष के बाद फिर आप उसी जगह जाओगे तो वह वटवृक्ष का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? 15 वर्ष के बाद जब जाओगे उसी जगह पर, वही वटवृक्ष वहां खड़ा है, तब फिर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? हो जाएगा। 15 वर्ष के बाद भी जब उसको आपसे आंखों से देखोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तब 15 वर्ष पहले जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था उसमें कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं थी, बात समझ रहे ना? वहां केवल प्रत्यक्ष था। पहली बार जिस पदार्थों को आपने देखा था वह केवल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि यह वटवृक्ष है, यह निश्चय हुआ आपको। 15 वर्ष के बाद जब आप गए तब भी वह वृक्ष दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हुआ। लेकिन इसके बीच में आपको एक स्मरण हो आया, ये वही वृक्ष है, यह वही वृक्ष है, ये जो स्मरण हो आया तो वह 15 वर्ष पहले प्रत्यक्ष दिखे हुए बड़ वृक्ष में और 15 वर्ष के बाद आज प्रत्यक्ष दिखता हुआ बड़ वृक्ष के बीच, दोनों प्रत्यक्ष के विषय में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रत्यभिज्ञा है। आप समझ गए कि नहीं? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में और प्रत्यभिज्ञा में यह अंतर है। प्रत्यभिज्ञा पहली बार पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वहां प्रत्यभिज्ञा की भूमिका नहीं रहती है। जैसे जब भी आपने पहली बार मुझे देखा होगा तो उस समय प्रत्यक्ष से देखा और निश्चय हो गया कि स्वामी आत्मानंद गिरी नेपाल वाले हैं, पक्का हुआ कि नहीं आपको? हैं?

0: पहली बार जो ज्ञान हुआ आपको, वह उसमें प्रत्यविज्ञान की भूमिका नहीं है, वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की भूमिका है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि स्वामी आत्मानंद जैसे हैं वैसे हैं, तो आपको पूरा ज्ञान हो गया। अब एक वर्ष के बाद फिर उसी महात्मा को आपने देखा, तो एक वर्ष के बाद भी आपको प्रत्यक्ष ही हुआ, आंखों से देखा, प्रत्यक्ष ही हुआ। परंतु ये एक वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष हुआ, उस प्रत्यक्ष के बीच में आपको एक दूसरा निश्चय हुआ कि ये आत्मानंद वही आत्मानंद है जो पिछले साल आए थे, ये वही आत्मानंद है। ऐसा होता है ना, किसी की जब तक स्पष्ट नहीं होता है, दूसरी बार प्रत्यक्ष नहीं होता, पहली बार प्रत्यक्ष हुआ, पिछले बार सुना आत्मानंद गिरी जी का प्रवचन, अब एक दो दिन आकर सुना था, एक दो दिन आकर सुने थे, उसके बाद आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरे साल जून महीने में कौन आएगा, दिमाग में ये जिज्ञासा उठी है, जानने की इच्छा हुई, तो प्रेम प्रिय आश्रम का वो वार्षिक कार्यक्रम का बुक दे दिया और देखा उसमें आत्मानंद गिरी, तो नाम पढ़ लिया आत्मानंद गिरी। लेकिन इतनी में से क्योंकि एक दो बार ही देखा था, वो दिमाग में फेस वो संस्कार पूरा पक्का हुआ नहीं था, आत्मानंद गिरी कौन महात्मा है, आत्मानंद गिरी स्मरण नहीं हुआ था, उसकी पिक्चर दिमाग में नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन है, कितने महात्मा है, आते हैं हर साल, पता नहीं कौन है कौन है। तो नीचे बोर्ड में भी देखा आत्मानंद गिरी, तो आए प्रवचन सुनने के लिए, तो बोर्ड में लिखा स्वामी आत्मानंद गिरी, दिमाग में फेस नहीं आ रहा है। हॉल के अंदर जब घुसे तो प्रत्यक्ष हो गए, है ना, एक वर्ष के बाद फिर प्रत्यक्ष हो गए, तब आपको वो स्मरण हुआ आया कि अरे ये तो पिछली बार भी आए थे, हाँ ये तो वही है जो पिछली बार आए थे। ये प्रत्यविज्ञा, दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता को सिद्ध करने वाले जो विषय है उसको प्रत्यविज्ञा कहते हैं। प्रत्यविज्ञा न होती तो आप ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये वही महात्मा है, आपको फिर यही होता कि ये नया महात्मा है। खाली प्रत्यक्ष होता तो आप एक साल के बाद फिर देखते, फिर आपको कहते ये नया महात्मा है, फिर दूसरी बार देखते प्रत्यक्ष आकर तो बोले ये तीसरी बार जो देखा ये नया महात्मा है। तो जब भी आप देखोगे तब नया महात्मा ही लगेगा, नया ही महात्मा होगा, आत्मानंद हर साल नया महात्मा हो जाएगा, प्रत्यविज्ञा यदि बीच में न हो तो। बात समझ गए कि नहीं, हर साल प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखते ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हर साल नया महात्मा हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये वही आत्मानंद जी हैं, दूसरा आत्मानंद नहीं है, ये प्रत्यविज्ञा है। प्रत्यक्षादि प्रमाणेषु प्रत्यविज्ञान पठ्यते कथं तस्याः प्रमाणत्वं इति वृच्छन् प्रबोध्यते। इस तरह जिज्ञासु ने जब पूछा, प्रत्यविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत न होने के कारण आपने प्रत्यविज्ञा को बीच में क्यों लाया, तो उसका उत्तर देते हैं, प्रत्यविज्ञा के बिना कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, अनुमान भी प्रत्यविज्ञा के बिना सिद्ध नहीं होगा। जैसे आपने यहां बैठकर पहाड़ में धुआं देखा और ये अनुमान कर ली कि व्यक्ति स्मरण हुआ, जहां अग्नि रहता है वहां धुआं रहता है, धुआं दिखाई पड़ा, इसका मतलब वहां अग्नि जरूर है, तो यह अनुमान से आपने वहां अग्नि निश्चय कर लिया। अब उस अग्नि को प्रत्यक्ष करने के लिए आप चले गए पहाड़ में, चढ़ाई की और अग्नि दिखाई पड़ा, तो पहले आपने अनुमान किया, अब प्रत्यक्ष हो गया वो अग्नि, तब उस समय क्या हुआ था आपको, जिस समय अग्नि प्रत्यक्ष हुआ पहाड़ में पहुंचने के बाद, वहां आपको प्रत्यविज्ञा ने काम किया, क्या मैंने अनुमान से जिस अग्नि को सिद्ध किया था यानी निश्चय किया था यह वही अग्नि है, यह प्रतिविज्ञा। नहीं तो अनुमान और प्रत्यक्ष के बीच में कौन समन्वय करेगा?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Siruthunai Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktam, abhi hum aur ek Shiv Bhakt ya Sant ki kahani sunenge jinka naam Cherutunayar hai. Yeh ek uch koti ke Nayanmar hai. Chol Mandal mein Mirukunadu namak ek प्रदेश है। यहाँ प्राचीन काल से ही तंजावर में विवेकशील आंतरिक और बाह्य रूप से सदाचार का पालन करने वाले शिष्ट जन निवास करते हैं। इसी स्थल में एक कृषक परिवार में जन्म हुआ चेरुतुनेयार का। ये सदा शिव की भक्ति में लीन रहते और शिव स्नेहियों की सेवा में अपना समस्त वक्त व्यतीत करते थे। तिरुवारूर स्थित विशाल शिव मंदिर में वाल्मीकि नाथ रूप में प्रतिष्ठित शिव की सेवा उपासना इनका विशेष भक्ति कार्य था। चेरुतुनेयार के समय में पल्लव राजा कलरचिंगर, जो स्वयं एक श्रेष्ठ शिवभक्त थे, शिवस्थलों के दर्शन करते हुए अपनी पत्नी के साथ तिरुवारूर के मंदिर में उपासना के लिए आए। राजा कलरचिंगर प्रधान मंदिर के गर्भगृह में भगवान की उपासना में लीन थे। उनकी पटरानी भीतर की परिक्रमा करती घूमती हुई उस मंडप पर पहुंची जहाँ ईश्वर को समर्पित करने वाले माला गूंथी जा रही थी। रानी ने वहां पड़े एक फूल को लेकर सूंघ लिया। इस कार्य को शिव अपराध मानकर चेरुतुनेयार ने रानी की नासिका काट डाली। राजा के पूछने पर निर्भय करके होकर उन्होंने अपने कृत्य को स्वीकार किया। परिपुराणम में इनको भी शिव के प्रति अनन्य भाव के लिए और उनकी सेवा के लिए भगवान के भक्त के रूप में स्मरण किया गया है। अंत में वे शैव संत शिव के चरण कमल में अमरता के आनंद में लीन हो गए। प्राचीन काल की इस कथा में वर्णित घटना से जिस तर्कहीन कट्टरता का बोध होता है वह उस युग का प्रमाण देता है। कालांतर में उसका परिमार्जन हुआ, मानव प्रेम और दया को प्रमुख स्थान मिला और नटराज शिव के भक्तों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रमुखता दी। इसीलिए चेरुतुनेयार एक उच्च कोटि के संत बने, क्योंकि उनसे भगवान के प्रति कोई भी गलती निंदनीय थी। इसलिए उन्होंने यह भी सोचा नहीं कि यह तो एक बड़ी महारानी है, मैं कैसे इनके समक्ष इनको दंड दे सकता हूँ। एक शिव भक्त के लिए उनके सबसे बड़े महाराज भगवान शिव हैं, क्योंकि इस दुनिया के ही नहीं बल्कि अपितु इस संसार के भी महाराज हैं। इसलिए अपने इष्ट देव की निंदा जो कि अबोध में हुआ, फिर भी उन्होंने रानी को क्षमा नहीं किया परंतु उन्हें दंड दिया। ओम नमः शिवाय।
4: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Om ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथस्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः।

पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक विशेष प्रवचन माला का ये आज द्वितीय दिवस, दूसरा श्लोक। गलंती संभोत्वत्

0: जयतां दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनम् वसन्ती मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी। शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, शंभो, सम्यक भवति इति शंभो, संभवति इति शंभो। संसार में जो अच्छी तरह रहता है उसका नाम शंभो, और संसार में जिसके स्मरण मात्र से कल्याण होता है वह शंभो। शंभो सम्यक भवति, सम कल्याणम भवति। कल्याण करने वाला होने के कारण भगवान शिव का नाम पड़ा शंभो। किसका कल्याण करेंगे? सभी का कल्याण करेंगे। देखो, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि भूतों का भी कल्याण करते हैं। तो जब भूतों का भी प्रेतों का भी कल्याण करते हैं तो क्या हमारा कल्याण नहीं करेंगे क्या? है, बोलो। किसी ने कहा, भगवान शिव शमशान घाट में क्यों बैठते हैं? शमशान घाट में क्यों बैठते हैं भगवान शिव? शिव से पूछा होगा किसी ने कि आप यहां क्यों बैठते हैं? आपके लिए रहने के लिए अच्छे अच्छे जगह हैं, बंबई में आओ, मलबार हिल रहो, मरीन ड्राइव में रहो, नेपियंसी रोड में रहो, है? चंदनवाड़ी में क्यों रहते हो? है? किसी ने कहा ना, तो भगवान शिव ने जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया है? मलबार हिल में रहने वाले जब घर से निकालेंगे तो उसको संभालेगा कौन? जब वो मलबार हिल में रहने लायक नहीं रहेगा तो सब लाएंगे यहीं चंदनवाड़ी, तो फिर उसको संभालेगा कौन? उसका बेटा भी नहीं संभालेगा, उसकी पत्नी भी नहीं संभालेगी, उसका पति भी नहीं संभालेगा, उसके बहू नहीं संभालेंगे, नाती पोते नहीं संभालेंगे, भाई बंधु कोई नहीं संभालेंगे। तब फिर सब लोग उसको उठाकर लाएंगे या मेरे हवाले करेंगे, तो मुझे संभालना पड़ेगा ना उसको, बोलो। इसके लिए मुझे यहां, कोई यहां रहने को तैयार नहीं है। कृष्ण से कहा, तुम यहां रहो, इन लोगों को संभालो। कृष्ण ने कहा कि नहीं बाबा, भूत प्रेत यहां घूमते, हम नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने देखा है, कहीं सुना है शास्त्र में कृष्ण मशान घाट में रहते हैं? सुना है शास्त्रों में, बोलो, हैं? कहीं सुना है, किसी शास्त्र में सुना है कृष्ण कहां रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। कहां क्रीड़ा करते हैं? तो जमुना के, यमुना पुलिना, जमुना के किनारे में क्रीड़ा करते हैं। विष्णु को कहीं सुना है शास्त्रों में को मशान घाट में रहते हैं? नहीं सुना ना? सारे शास्त्रों में सभी देवी देवताएं मशान घाट में रहते हैं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया। हां, एक महिला है, बड़े साहसी हैं, उन्होंने साहस किया है भगवती शिव की पत्नी पार्वती, क्योंकि श्रीमान वहां रहेंगे तो श्रीमती भी वहीं रहना पड़ेगा ना। है, आज का युग तो है नहीं कि श्रीमान कहीं रहे और श्रीमती कहीं और रहे, वो तो उस जमाने का युग था, श्रीमान जहां रहे श्रीमती वहीं रहे। इसलिए दुर्गा सप्तशती पढ़ो, भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं। उनको भी यही कहा, शमशानेश्व क्रीड़ा, वो भी शमशान में ही क्रीड़ा करती है। क्योंकि उनके शिवजी जब शमशान में क्रीड़ा करते हैं तो पार्वती कहां रहेगी, कोई मलबार हिल में थोड़ी रहेगी। तो पुष्पदंताचार्य जी ने शिव का निवास स्थान बता दिया ना, श्मशाने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। देख लो, तो विष्णु को कहा तुम रहो, तो बोले नहीं बाबा हम नहीं रहेंगे। और कृष्ण को कहा, वो भी कहने लगे कि हम नहीं रहेंगे। गणेश को कहा नहीं नहीं आप वहां रहो, आप रहो हम नहीं रहेंगे। बोले तू पहले पैदा तो वहीं हुआ है, मां बाप जहां रहेंगे बच्चे वहीं पैदा होंगे ना। बोले पहले तो छोटे बच्चे थे, हम कुछ जानते नहीं थे, अब तो बड़े हो गए हम, अब मशान घाट में नहीं रहेंगे। देख लो गणेश को क्या कहते। क्या एक बार कहीं गया था, बड़ा साइन बोर्ड, कहां का राजा, अलीबाग का राजा, क्या लालबाग का राजा है, तो वो तो लालबाग के राजा है, चंदनबाड़ी के राजा थोड़ी है वो। भगवान शिव कहां के राजा है, चंदनबाड़ी के राजा, और क्या शंभो कल्याण करने वाले। तो शिव ने पूछा कि तुम मशान घाट में क्यों रहते हो, बोले और सारी देवता तो और जगह कल्याण कर देते हैं, लेकिन मशान घाट में और कोई कल्याण करने के लिए नहीं आता, इसलिए वहां आने पर मुझे कल्याण करना पड़ता है उन लोगों को, इसलिए मैं उनका भी कल्याण करता हूं। पिशाचा सहचरा, भूत का भी कल्याण करना है, प्रेत का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण है, सर्प का भी कल्याण करना है, बिच्छू का भी कल्याण करना है कि नहीं, बोल नहीं तो क्या जहरीला को किसी ने आभूषण बनाया हुआ देखा है कहीं, विष्णु ने नाग को आभूषण बनाया कहीं देखा सुना है, कृष्ण ने नाग को आभूषण बनाया, उसका तो नाथ दिया, जीवन ही खत्म कर दिया, जीवन सही तो उसको हृदय में लगाया किसने, बोलो, कृष्ण ने तो सिर में ऐसा दबा दिया कि बेचारा उसका प्राण ही निकल गया। क्यों मारा सर्प को, नाग को क्यों मारा कृष्ण ने, नाग क्यों ना था, क्योंकि उसमें जहर है, जहर है, इसी अपराध से उसको मार डाला कृष्ण ने। और शिव ने क्या किया, जहर तो है, जहर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको मारे डालो, है ऐसा नहीं है, वो जहर भी प्रयोजनात्मक है, इसीलिए उसको उन्होंने हृदय से लगाया। शिवपुराण का शिवचरित्र सुनो, क्या गजब का प्रसंग आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सब लोग त्राही त्राही हो गया, तो भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने उस जहर को हाथ में अंजलि में ली और पान कर गए। पीने लगे तो लक्ष्मी जाकर हाथ जोड़ने लग गई शिव जी से, महाराज गले से नीचे नहीं उतारना। बोले क्यों नहीं उतारना भाई, हमारी मर्जी हम उतारेंगे। बोले नहीं तुम तो उतारोगे, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, मेरा पति तो वही तुम्हारे हृदय में बैठा है बेचारा, उसका क्या होगा है। बोलो लक्ष्मी ने कहा नीचे नहीं उतारना महाराज, तुम्हारे हृदय में तो मेरा पति बैठा है, और तुम उसको नीचे उतारोगे तो उसका नुकसान होगा, इसलिए महाराज नीचे नहीं उतारना। अब देवताओं ने सबने देखा कि लक्ष्मी जाकर उसको नीचे उतारने से रोक रही है, अब कहीं भगवान विष्णु लक्ष्मी का माने भगवान शिव लक्ष्मी के बात पर आकर उसका नीचे नहीं उतारा, बाहर फेंक दिया, तो फिर हमारी समस्या होगी। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महाराज इसकी बात पर नहीं आना, हाँ ये तो बड़ा स्वार्थी है। क्यों महाराज, बोले अपने पति को बचाना चाहती है, वो जानती है कि तुम्हारे हृदय में उसका पति बैठा है, उसको रोकना चाहती है, इसलिए वो बड़ा स्वार्थ से अपनी बात कह रही है, और उसकी बातों पर आकर आपने उसको बाहर फेंक दिया तो फिर हमारा क्या होगा है? उसके तो एक पति की रक्षा करने के लिए यहां बाहर फेंक दोगे, न जाने कितनों के पति का नाश होगा। बोलो है? बहुत से महिलाओं के, बहुत से स्त्रियों के पति का रक्षा करना है कि एक महिला के पति की रक्षा करना है, एक के चलते हजारों का नाश नहीं करना महाराज, बाहर नहीं फेंकना, कृपा करो। अब भगवान शिव के सामने धर्म संकट पड़ गया कि नहीं बोलो, है? लक्ष्मी कह रही है अंदर नहीं उतारना, और सारे प्राणी कह रहे हैं कि बाहर नहीं फेंकना। तो उन्होंने मध्यम मार्ग कर ली, बोले न बाहर फेंकेंगे न नीचे उतारेंगे। हाँ, अपने प्राण को समष्टि प्राण में धारणा करके रोष शक्ति का स्मरण किया और सारे विष को पचा दिया, और एक निशानी तो रख दिया, नहीं तो जीव तो बदमाश है वो। हाँ, काम बन जाने के बाद वो ठेंगा दिखा देते जीवात्मा। हाँ, अपने काम जब तक नहीं बने तब तक हाथ जोड़ते फिरेंगे, और काम बन जाए तो ठेंगा दिखा देंगे ये लोग। कल जाकर यदि भगवान शिव कहे तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने विष पान कर ली, और आज का कोई व्यक्ति शिवसी से कहे तुमने विष पान करके पृथ्वी को शुद्ध बनाया और पृथ्वी की रक्षा की, इसमें क्या प्रमाण है? हम क्या प्रमाण देंगे भाई यदि विष को हजम कर देंगे तो? तो उनके प्रमाण दिखाने के लिए थोड़ा सा निशानी रख दिया कंठ में। हाँ, तब उसका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। आप लोग बहुत समझदार हो, हम तो ऐसे ही समय पास कर रहे हैं भाई। उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। आज तक प्रमाण है, कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो देखो ये हमने जहर पी थी। हाँ, और उसको पता है, ये अभी रखा है निशानी, ये प्रमाण है। तब से लेकर आज तक सभी लोग भगवान शिव के अनुग्रही हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं, नीलकंठम विशालम। अब जब हाथ में अंजुली लिया और अंजुली से पान कर रहे थे तो हाथ के छिद्रों में से कुछ बूंदे नीचे गिर गई है। अब क्या करें भाई? तब सब लोगों ने कहा महाराज नीचे गिर गया, और वही भयंकर पृथ्वी में फैल जाएगा, फिर सर्वनाश करेगा। अब भगवान शिव उसको चाटे है? जो अंजुली से पान करने वाला है वो चाटेगा क्यों भाई, बोलो? जो गिलास भर के दूध पीने वाला है वो दूध के एक बूंद नीचे गिरने से जुआ से क्यों चाटने जाएगा, बोलो? भर भर के अंजुली से विष पीने वाला व्यक्ति नीचे गिरा हुआ एक बूंद जहर को पीने चाटने जाएगा वो? लेकिन सबका हल्ला करने लग गया कि वो रह जाएगा, उसका क्या करेंगे? अब गिर गया आपके हाथ से। भगवान शिव ने बिच्छू और सर्प को कई सारा किया कि चाटो बेटा, तुम लोग रहने न दो। हाँ, तुरंत चाटो, नहीं तो ये फैल जाएगा सारा पृथ्वी में। तो सर्प और बिच्छू दोनों ने चाट लिया। तो पूछा कि अब तो हो गया काम, बोलो? देवताओं ने, मनुष्यों ने, असुरों ने, सब ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अब हमारा काम बन गया आपकी कृपा से। अब भुवन भय भंग व्यसनिना, अब संसार का असमय में प्रलय होने का जो डर था, उस भय से हम मुक्त हो गए, निवृत्त हो गए। आपकी जय हो, आपका हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भगवान शिव तो चले गए। अब इधर सर्प और बिच्छू घूमने लगे तो जो देखे उसको डंडा मारे। हाँ, देवता लोग, महादेव को भी सब स्मरण करे, देवता लोगों को भी यज्ञ में भाग मिले, लेकिन बेचारा पृथ्वी की रक्षा करने वाले जो सर्प और बिच्छू है कोई उसके नजदीक फटकने नहीं दे। बोलो, यज्ञ कहीं होता है, देवताओं को बुला बुला कर इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः, इदम वरुणाय स्वाहा है, सबको भाग मिलता है। और हम भी जाते हैं, कुछ थोड़ा भाग मिलेगा यज्ञ में, यज्ञ हो रहा है, हमको भी थोड़ा भाग मिलेगा। जब हम जाते हैं तो हमको डंडा दिखाकर भगा देते हैं, अंदर घुसने नहीं देते। महाराज ये आपके कहने से जहर चाट ली, पृथ्वी की रक्षा कर दी, आज सबके द्वारा तिरस्कृत हो गए है। विष पान करके भी आप शंभु भय जगदीश है, देख लो, मान सहित विष पान विष पी के शंभु भय जगदीश है। देखो बोलो, बकरे ने, कबीर जी का शायद वचन है ये, बकरे ने मैं किया तो कटाया शीश, मान रहित और नहीं दक्ष ने मान रहित होकर अभिमान से दक्ष का सिर कटा और मान पूर्वक विष्पान करने से शंभु भय जगदीश। पूरा कविता मुझे याद नहीं आई लेकिन उसका भाव यही है। माने रावण के तो नाभि में अमृत था तो कटाया सिर, देख लो। नहीं, रावण का इतिहास क्या है? पैदा होते ही उसके नाभि में अमृत था, उसको मरना संभव ही नहीं था, तो भी अभिमानी घमंडी होने के चलते तो उसका सिर कट गया, मर गया वो। लेकिन मान सही सभी देवताओं ने मान दिया और मान पूर्वक तुम्हारा सम्मान का आदर करते हुए मैं विष भी पी जाऊंगा, भगवान ने विष पान कर ली तो वो जगदीश हो गए है? और राहु कटाए शीश, देख लो, मान रहित विष अमृत पी के राहु कटाया शीश। राहु को किसी ने बुलाया नहीं था, बुलाया था अमृत पीने के समय में, किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो छुप कर गया अमृत पीने के लिए। अब अमृत पीकर भी परिणाम क्या हुआ कि उसका सिर कट गया और भगवान शिव ने मान सहित जहर पी लिया तो जगदीश हो गए। तो बिच्छू और सर्प ने कहा, महाराज अब हमारा क्या होगा? यदि ये हाल होगा, ये हमको पहले पता होता तो हम नहीं चाटते, इतना बड़ा उपकार का काम किया फिर भी हमारा तिरस्कार, ये तो अन्याय हो गया। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन किया है तुमने, इसलिए दुनिया तुमको मान दे चाहे न दे, मैं तुमको जरूर मान देता हूं। कैसे महाराज? बोले देख, सर्प को पकड़ लिया और सिर ले तो सबसे ऊपर रख देता हूं तेरे को, ले गंगा जी के साथ बैठ जा ऊपर। सबने तिरस्कार किया और भगवान शिव ने लगा दिया ऊपर। सर्प तो पहुंच गया भगवान सिर मस्तक में और गले में बाजुओं में है, देख लो। और बिच्छू कहने लगा, महाराज हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा कि उसको पकड़ लिया, एक इधर लगा दिया, एक लगा दिया, झुमका बना दिया, कुंडल बना दिया, और क्या। आ शिवजी मस्त हो गया है, दो कुंडल बना दिए, बिच्छुओं को कान का कुंडल बना दिया, सर्प को आभूषण, ये आगे आएगा यहां, ऐसे हैं शंभु। हे शंभु, सबका कल्याण करने वाला, बिच्छू का भी कल्याण करने वाला, सर्प का भी कल्याण करने वाला, मरे हुओं का भी कल्याण करने वाला, जिंदों का भी कल्याण करने वाला, भूत प्रेतों का कल्याण करने वाला, देवी देवताओं का कल्याण करने वाला, मनुष्य यावत जीवों का कल्याण करने वाला होने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? शंभु। हे शंभु, गलंती शंभो त्वचरित सरित किल विसरजो दलंती, त्वचरित हे शंभो, माया के आश्रय से यानी शक्ति के आश्रय से, पार्वती के आश्रय से, पार्वती शक्ति माया जो कहो उनके आश्रय में रहकर आपने जो जो संसार के उद्धार के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए जो जो काम किया है, उन सारे काम ही आपका दिव्य चरित्र है ना? आपका ये उत्तम कीर्ति, उत्तम चरित्र। तो चरिता सरिता है, तो चरिता चरिता एव सरिता, सरिता नदी जल, भगवान शिव के दिव्य चरित्र रूपी जल सरिता नदी। देखो बारिश हो गई ना बंबई में, आज तो खूब जमकर बारिश हो गई है, वाह। जिधर देखो उधर ही बह रहे है पानी, जिधर देखो उधर पानी बह रहा है। जहां गंदा से गंदा दुर्गंध युक्त पानी बह रहा था वहां आज दिव्य क्या कंचन पानी बहने लग गया। सारा गंदगी को भगा के ले गया, समुद्र खाड़ी में डाके डाल दिया उसने। किसने? बारिश मेघ जब बरसा तो उसके पानी होने नाले साफ हो गए। बीएम से क्या नाला साफ करेगा, बारिश सब साफ कर गया। पत्ते हम पहले देख रहे थे प्रेमपुरी आश्रम के बाहर, एक है ना पेड़ रबड़ प्लांट का है, रबड़ प्लांट, ओ पक्षियों के विष्ठा और धूल इतना काला इतना गंदा था, देखने लायक नहीं था। पर आज देखा तो क्या चमक, क्या सुंदर, क्या निर्मल है। सारी गंदगी को बहाया किसने? बारिश के पानी ने। क्या नदी के पानी या धार नलके के पानी से उस पेड़ के सारे पत्तों को धोना संभव होता है? संभव होता? और वो संभव कर दिया कि नहीं मेघ ने? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे शिवा हे शंभो, तो चरिता सरिता, आपके दिव्य उत्तम चरित्र जो लोक हितकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं, जब आपके इस दिव्य चरित्रों का हम स्मरण करते हैं, गान करते हैं, बखान करते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: सभी ने कहा जब सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन होगा? उसने कहा कि आप चिंता मत करो, सबको राजा बनाएंगे पर एक शर्त है। वह शर्त यह है कि एक वर्ष के लिए सब राजा बनेंगे, एक एक वर्ष के लिए बांट दिया, सबका ऊपर नीचे नाम लिख लिया, क्रम से सबके सब एक एक वर्ष तक राजगद्दी पर बैठेंगे। सभी बड़े खुश हुए, पर बोला कि अभी हमारा वाक अधूरा है, राजा तो बनेंगे पर एक शर्त है, एक वर्ष के बाद सबको नदी के उस पार छोड़ दिया जाएगा और वहां पर वे जंगली जानवरों के भोजन बन जाएंगे। सब घबराए, बोले कि राजा बनेंगे, एक वर्ष तक तो मजे से जीवन यापन करना है, और जैसे एक वर्ष बीतेगा, बारहवां महीने आते ही जबरन नदी को उस पार भेज देंगे, वहां पर भेड़ सिंह भालू का आहार बन जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, वह तैयार हुआ। राजा ने कहा कि शपथ लेने के पहले सोच लो, शपथ पत्र पढ़ने के पहले सोच लो कि एक वर्ष तक तो राजा बनोगे, परंतु बारहवें महीने जबरन हम तुमको उस पार भिजवा देंगे। उसने कहा कि मैं तैयार हूं। जो राजा बनने वाला था उसने तर्क किया कि एक वर्ष के लिए राजा बनूंगा तो मेरे अधिकार क्या होंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकार आप कुछ सब कुछ मिलेंगे, आप जो चाहें सो सब कर सकते हैं, यहां तक कि सभी आपके प्रजा होंगे, मैं भी आपका प्रजा, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा, जो कहेंगे सब हम लोग करेंगे, आपके लिए गला भी कटा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा बहुत अच्छी बात, शपथ ग्रहण कर लिया, एक वर्ष के राजा बना दिया। राजा बनने के बाद 3 दिन तक तो अपने राज्य के खजाना का संपत्ति का उसने पूरा मुआयना किया। 3रे दिन घोषणा कर दिया कि हमारे राज्य में जितनी सेनाएं हैं सारी सेना इस पार उस पार एक ब्रिज पुल बनाने के लिए लगा दिया जाए, सारी सेना को राज से एक पुल बनाने के काम में लगा दिया, इस पार से उस पार, नदी को उस पार जाने के लिए पुल। बड़ा सुंदर 4 महीने पुल तैयार हो गया। 4 महीने के बाद फिर एक संसद बुलाया, उसमें बड़े बड़े जाने माने कारीगर थे, विद्वान थे, प्रधानमंत्री थे, सबके सामने कहा कि देखो हमारे शासन के 4 महीने बीत गए और हमने बड़ा सुंदर नदी के उस पार जाने के लिए सेतु बनवा दिया है, अब हमारे रह गए 8 महीने। 8 महीने में से 4 महीने निकाला और कहा 4 महीने में जैसा ही राजमहल है ना, बिल्कुल ऐसा ही उस पार तैयार होना चाहिए। सारे सैनिकों को लगा दिया, 4 महीने के अंदर बड़ा सुंदर जंगल में राजभवन बनवा लिया, बाग बगीचे लगा दिए गए, फूल फुलवारी लगा दी गई। 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री को बोला कि देखो 8 महीने बीत गए, अब रह गए हमारे 4 महीने। 2 महीने में उसने सबको बोल दिया कि उस पार सारे जितने भी भंडार है भंडार को भर दो, सोने चांदी से अनाज से भर दो। 2 महीने के अंदर पूरा खजाना जंगल के उस पार जो नया राजमहल था वहां भरवा दिया, साजबाज सब करवा दिया। अब सारी सेना को बुलाया, प्रजा को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया, बोला देखो 10 महीने हमारे शासन के बीत गए और तुम लोग जबरन हमको उस पार भेजोगे ना, इसकी अपेक्षा मैं आज ही इस्तीफा दे रहा हूं, अपना तुम लोग नया राजा चुन लो और मैं अब उस पार जा रहा हूं और पैदल चलकर जाऊंगा, तुमको भेजने की जरूरत नहीं। सबने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज अब उस पार जाने से क्या फायदा, आपने तो यहां से बढ़िया वहां राजमहल बना दिया, सारे खजाने भिजवा दिए, सारी व्यवस्थाएं करवा ली, आप चाहे इस पार रहो चाहे नदी के उस पार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भगवान ने भी हम लोगों को राजा बनाया, कितने दिन के लिए बनाया है, 100 वर्ष के लिए। पर 100 वर्ष के लिए जो बनाया उसमें भी शर्त है, कुरुवन नेवे कर्माणी जिजि विशेष सतगुण क्षमा, आप सत्कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक यापन कर सकते हैं, बिना सत्कर्म किए 100 वर्ष की आयु भी भारी हो जाती है। तो हम लोगों को भगवान ने 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया है, सारा अधिकार दिया है, स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि महर्षि का सूत्र है कि कर्ता स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है परंतु फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष में आप चाहे कुछ भी करो भगवान ही बोलने वाले हैं, परंतु जैसे ही आयु समाप्त होगी जबरन नदी के उस पार नौका पर बैठा के भेज देंगे। पर यदि हम विवेक से 100 वर्ष के अंदर ही इस पार से उस पार मल्लय की धरती से स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक के बीच में जो सेतु है, उपनिषद में आता है ए सेतु विधर्णम च, यही परमात्मा सेतु है। जो मुक्षु है साधक उपासक हैं उनके लिए सेतु का काम करता है। जिस प्रकार से सेतु नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है सत्संग है स्वाध्याय है यह सेतु का काम करता है। तो सत्संग स्वाध्याय के द्वारा हम सेतु का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो मनन होता है, ये मनन समझो कि मनोराज्य बोलते ना हम लोग, मनन मतलब मनोराज्य। तो हम लोग जो मनन करके एक सुंदर अपने लिए परलोक में राज्य निर्माण करते हैं और निध्यासन के द्वारा सारे विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार होता है और सजातीय वृत्ति का प्रवाह, इसका नाम निध्यासन है। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करते हुए सजातीय वृत्ति प्रवाह का नाम निध्यासन है। तो जैसे कि राजा ने उस पार खजाने भर दिया, वैसे ही हम लोग भी ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति के द्वारा जो है सब कुछ वहां पर भेज देते हैं, कुछ शेष नहीं रहता है। इसके बाद इस संसार के सारे मनुष्य सारे प्राणी आप जाओगे तो भी हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करेंगे। जैसे बड़े बड़े महापुरुष चले जाते तो भी हम लोग निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, रहते तो भी उनकी स्तुति प्रार्थना वंदना होती है और जाने के बाद भी। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें भगवान ने आपको 100 वर्ष के लिए राजा बना दिया, स्वतंत्र कर दिया है। अब आगे का काम आपको करना है, या आप राजभोग करें या जो है परलोक संबंधी तैयारी करें, आपको पर निर्भर करता है। एक और श्लोक कर ले, 10वां श्लोक है।

वपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु किणाभ्याम गिरीशयत स्वयं तस्ते ताभ्याम तव किमनुवृत्ति न फलति तवैश्वर्यम यत्नात्। भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए बिरंची हरि अधः, बिरंची मतलब ब्रह्मा जी ऊपरी ऊपर गए। सृष्टि के आदि में एक प्रसंग आता है, जैसे ही ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी का निर्माण होने के बाद ब्रह्मा जी में और हरि में विवाद हुआ कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ। ज्येष्ठता श्रेष्ठता का विवाद देख करके भगवान शंकर ने विचार किया कि इनको हमने उत्पन्न किया, प्रजापति पद प्रदान किया कि सृष्टि का विस्तार करें पालन करें, और ये जब आपस में विवाद करेंगे तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। इस स्थिति को देखकर उनके सम्मुख एक दिव्य अनल स्कंद वपुष, अनल बोलते अग्नि को, अग्नि का स्कंद मतलब खंभे के समान ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, जो कि आकाश से भी ऊपर पाताल से भी नीचे। दोनों ने विचार किया कि जो इसका पता लगा लेगा वही हम में से श्रेष्ठ होगा और ज्येष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, रजोगुणी ब्रह्मा जी हैं, रजोगुणी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, रजोगुण का स्वभाव है, और सत्वगुणी जो होता है उसका शांत स्वभाव होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु ने कहा, चलो कोई बात नहीं हम नीचे जाते हैं। तो भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए। परिच्छेत्तुम यातौ, परिच्छेत्तुम का अर्थ है उस ज्योतिर्मय पिंड को नापने के लिए, परिच्छिन्न करने के लिए दोनों यात्रा किए। परंतु अनलम, अनलम का अर्थ है अलम नहीं हुए, पर्याप्त नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए। इसके बाद जो है ततो भक्ति श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के प्रार्थना करने लगे गिणद्भ्याम। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि उनकी प्रार्थना को सुन करके स्वयं तस्थे ताभ्याम, ताभ्याम हरि बिरंचिभ्याम, विष्णु और ब्रह्मा के सामने स्वयं ही अभिव्यक्त हुए। तव किम अनुवृत्ति न फलति, क्या आपके अनुवृत्ति मतलब सेवा या समर्पण फलित नहीं होता है, अर्थात अवश्य फलित होता है। जब ब्रह्मा और हरि दोनों मिल करके आपके ऐश्वर्य का परिच्छिन्नता माप नहीं कर सके तो सामान्य प्राणी कैसे कर सकता है, और मैं पुष्पदंताचार भी भला कैसे कर सकता हूं।

से उन्होंने लांग दिया था, अतिक्रमण किया था, वो क्षमा याचना कर रहे हैं। स्वयं तस्थे ताभ्याम, यही बात उपनिषद में आता है कि स्वयं ईसा तनु विवीणते, ये जो आत्मा है स्वयं ही आपके सामने अपने तनु मतलब स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। जिसको आत्मा वरण करती उसके सामने प्रकाशित वह हो जाता है। तो भगवान के चरणों में सर झुकाने से सब कुछ मिल जाता है, इस बात को दसवें श्लोक में बतलाया। अनुवृत्ति बोलते समर्पण को। आज भी जब किसी का तिरस्कार करना होता है तो हम कहते हैं कि तेरे सिर पर हम चार जूते मारेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब सिर जो प्रधान है उसके ऊपर हम लोग जूता का प्रहार करके किसी का तिरस्कार अपमान करते हैं। और यह बात पूरी दुनिया प्रसिद्ध है, चाहे भारत हो या अमेरिका। परंतु हमारे देश की विशेषता है, महिमा है कि हम अपने सिर को किसी के चरणों में झुका करके उसको सम्मानित करते हैं। और यह परंपरा पश्चिम जगत में नहीं है। पश्चिम यह तो खोज निकाला कि किसी का अपमान कैसे हो, परंतु सम्मान कैसे हो यह खोज केवल भारत ने किया। अनादि काल से हमारे यहां परंपरा है कि चाहे देवता हो या गुरुजन हो या श्रेष्ठ हो या घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, उनके चरणों में सिर झुका करके जब हम समर्पण करते हैं तो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। विवेक चूड़ामणि में बार बार आता है, अहंकार एक ऐसा विकार है जिस अहंकार के द्वारा जीवात्मा परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ। परिच्छिन्नता मतलब कि ये भूमा रूप था, व्यापक साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परंतु जैसे ही अहंकार हुआ कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, 3.5 हाथ का अहंकार होते ही, भावना होते ही अपने आप को हाल मास चाम, जो मल मूत्र का भंडार है, ये जो शरीर है हमारा, आप विचार करें तो केवल मल मूत्र का ये समझो घर है। स्वयं तो चैतन्य है, निर्मल है, उस चैतन्य निर्मल को भी आपने इस मल मूत्र के भंडार में कैद कर दिया और इसी में अहंकार कर लिया, यह मैं हूं। जैसे अहंकार हुआ, अहंकार होने के बाद विषयों का चिंतन, अब विषयों के चिंतन करने के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो संसार का जड़ है अहंकार, अहंकार का कारण है अज्ञान। जब हम किसी के चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, सर रखते हैं, तो वहां पर अहंकार गलता है और अहंकार के विसर्जन से परम सुख की उपलब्धि होती है। सारे शास्त्रों का तात्पर्य है अहंकार को विसर्जित करना। इसलिए विसर्जन में तात्पर्य है क्योंकि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, अपने जीवन के अशेष विशेष दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है। और यह तभी उपलब्ध होगा जब हमारा अहंकार विसर्जित हो जाए। यह प्रत्यक्ष है, हम सुषुप्ति में जाते हैं, सुषुप्ति में अहंकार नहीं होता है, यहां तक कि मैं भी विसर्जित हो जाता है, मैं भी समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति में जाने के बाद यह मैं हूं ऐसा भान नहीं होता है, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सेठ हूं, कोई भी अहंकार नहीं होता है। न देश का अभिमान, न क्षेत्र का, न काल का, न भाषा का, न जाति का, न गुण का, न कला का, कोई अभिमान नहीं होता है। और जब तक अभिमान होता है तब तक नींद भी नहीं आती है। आप नींद की एक के बाद एक गोली खाते जाइए परंतु नींद नहीं आनी है। और बिना निद्रा के सुख की प्राप्ति नहीं होनी, बैटरी चार्ज भी नहीं होगी। जैसे ही अहंकार विगलित होता है वैसे ही आप परमानंद में डूब जाते हैं, सारे दुख समाप्त 4-6 घंटे के लिए। आए दिन ये प्रत्यक्ष सबके जीवन की अनुभूति है। जागृत अवस्था में भी यदि हमने अहंकार को गला दिया

0: विसर्जित कर दिया तो निश्चित ही हमारा जो जीवन है, जिसको कहते हैं कि बड़ा दुख है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, तो इस संसार में रह करके भी परमानंद की अनुभूति होगी। जैसे सुषुप्ति में होती है वही आनंद जागृत में स्वप्नावस्था में भी हो सकता है, बशर्ते हम अहंकार को गलाने का अभ्यास करें। पर आज की तो पढ़ाई ऐसी है कि उल्टे हमारे मन में अभिमान पैदा करती है, सीमित अहंकार। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरुजनों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आता है दसम स्कंद में, वे भी अपने सुधर्मा नामक सभा में जाने के पूर्व वसुदेव देवकी और बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखकर नमस्कार करते, इसके बाद उद्धव जी के साथ सुधर्मा नामक सभा में आते थे। परंतु आज हम लोगों को संकोच होता है कि हम तो इतने बड़े, हम कैसे जो है माता पिता बड़े बूढ़े के चरणों में सर झुका। एक नया परंपरा चला है ना हाथ से, अत्याधुनिक है, इसको कहते हैं कि ये भी नमस्कार का डेवलप है, विकास है, है? हाँ देखो गिरीश भाई बढ़िया बता रहे। एक बार मैं भी कहीं फोन सुन रहा था हरिद्वार में, तो फोन तो महाराज जी का था अपने दसम पीठाचार्य जी का, तो हमारे यहाँ का एक ही फोन का कनेक्शन सब जगह है, कोई भी उठा सकता उठाता है, तो उठाया तो उसने कहा हाय महाराज जी है, हमने कहा हाय क्या होता है पता ही नहीं था, उन्होंने कहा हाय हाय यहाँ कोई नहीं भाई, तो वो समझ गए कि ये जानते नहीं हाय का मतलब क्या होता है। मैं सोचा कि हाय कोई आदमी होगा, हाय कोई जो है बात करना चाहती है कोई स्त्री फोन की, अब बताओ आप नमस्कार है भी हाय कहते हैं, तो वही हाय जो है ना पूरा जीवन भर लगा रहता है। देखो हमारे यहां जब जन्मदिन मनाते हैं ना तो दीपक का प्रज्वालन करते हैं, जितने वर्ष जन्म के बीत जाते हैं, मान लीजिए किसी के जन्म के 50 वर्ष बीत गए ना तो 50 दीपक जलाते हैं, ऐसी परंपरा है पुरानी प्राचीन, तो 50 वर्ष बीत गए तो 50 मिट्टी के दीवा में घी या तेल भर के जलाते हैं, जलाने के बाद जो है भगवान का स्मरण करते कीर्तन करते भजन करते मिठाई बांटते हैं, मतलब कि जीवन में रोशनी फैले। और वैसे भी जब घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, ये घर का चिराग है, ये घर का दीपक है, हमारे कुल परंपरा में रोशनी फैलाएगा। परंतु पश्चिम में क्या होता है, उल्टा, दीपक को बुझाते हैं ना आप, केक काटते हैं दीपक को बुझाते हैं, तो दीपक बुझाने का मतलब कि वे जो है चाहते हैं कि बस, जैसे उल्लू होता है ना, उल्लू को देखो दीपक पसंद नहीं आता है, जो भी नक्तर उल्लू होगा वो दीपक को बुझा देगा, या जो है सूर्य की भी निंदा करेगा कि सूर्य हमारे काम में खलबली मचा रहा, वो अंधेरे में जाके छिप जाएगा। वैसे महाराज जो पश्चिम वाले केक काटते हैं तो आप देखे होंगे ना, दीपक बुझा देते हैं, मतलब इनको जो है ये जो है उसी को अंधकार को पसंद करते हैं, अंधकार में जीना चाहते हैं। अंधकार होगा तो बहुत समस्याएं आएंगी, अंधकार होने के बाद आप अपने आप को ही पहचान नहीं सकते, ना दूसरे को पहचान सकते, ना बड़े बूढ़े को। इसीलिए हमारा जब जन्मदिन मनाते हैं तो पहले जो है ना दीपक प्रज्वालन होता है, भगवान का सुमिरन होता है कि आपकी कृपा से हम जो है इतने वर्ष तक सकुशल आयु बिता लिए, आगे की आयु वैसे बीते। तो देखो भगवान राम प्रातः काल जो बड़े बूढ़ों को नमस्कार किए, तो नमस्कार करने से क्या छोटे हो गए कि बड़े हुए, ईमानदारी से बताना, छोटे नहीं हुए। और हनुमान जी की पूजा उनसे ज्यादा होती है, राम जी के मंदिर तो कम मिलेंगे आपको, हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा है। हनुमान जी देखो हमेशा वज्रासन में बैठ के हाथ जोड़े रहते हैं कि जो सेवा जो हुकुम जो आज्ञा, किम अनुवृत्ति, बस किम मतलब क्या अनुवृत्ति है, क्या आज्ञा है, हमेशा राम जी के तरफ देख करके हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो सेवा की बड़ी महिमा है। यदि हमारा अहंकार गल जाए, गलाने का तरीका है, यदि हम बड़े बूढ़ों के चरणों में सर झुकाते हैं तो सर झुकाते अपने आप अहंकार विगलित होता है, और विगलित होते अंतःकरण निर्मल होता है। और अंतःकरण के निर्मल होते ही फिर जितने भी सद्गुण है वे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि उपनिषद कहती है आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे स्वरग्रंथिनाम भी प्रमोक्ष। यदि हम अपने जीवन के आहार व्यवहार सुधार लें, आहार का तात्पर्य है आहरियते अनेनेति आहार, जो इंद्रियों से विषयों का सेवन इसका नाम आहार है। जैसे आंख का भोजन है रूप, कान का है शब्दों को सुनना, पैर का है गमनागमन, हाथ का है लेन देन, जीभ का है बोलना। तो जो आंख से हम देखें वह क्या सोचे, सर्वत्र चैतन्य है, परमात्मा की भावना करें। और वास्तव में संसार भावना पर ही निर्भर है। ब्रह्मा जी ने एक पिंड बनाया, इस पिंड पर हमने भावना कर लिया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, है एक पिंड। हाल मास चाम का 3.5 हाथ का एक पिंड है, उसी पिंड के ऊपर सारी कल्पनाएं हैं, सारा विवर्त है। विवर्त मतलब आरोप है। किसी ने कहा कि देखो ये तो मेरा पुत्र है, दूसरे ने कहा कि पुत्र नहीं ये मेरा भतीजा है, तीसरे ने कहा भतीजा नहीं ये मेरा भांजा है, चौथे ने कहा भांजा नहीं ये मेरा दोस्त है, पांचवे ने कहा बिल्कुल नहीं ये मेरा दुश्मन है। बताओ क्या है वो दोस्त है कि दुश्मन है? कि केवल भावनाओं से हम वैसा मान करके तमाम व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति दोस्त मानेगा उसे बड़ी प्रसन्नता होगी देख करके, और दुश्मन मानने वाला देखेगा दूर से आ रहा है तो रास्ता काट लेगा, जैसे चलो रास्ता अलग नाप लेगा। तो जैसे कि संसार में भावनाओं से व्यवहार करते ऐसे ही यदि भावना करनी है तो बढ़िया भावना करें। जब तक चैतन्य है तभी तक हम कहते हैं कि ये दोस्त है, दुश्मन है, भाई है, भतीजा है, पुत्र है। चैतन्य के निकलते मिट्टी का ढेर हो जाता है, सब कुछ चैतन्य है। तो जब सब कुछ चैतन्य है तो हम चैतन्य रूप की भावना क्यों न करें? तो आंख से जब भी देखे तो क्या समझे, साक्षात ब्रह्म है, नारायण है, श्री कृष्ण है, श्याम सुंदर है, राम है। कान से जो भी कुछ सुने तो क्या समझे, शब्द ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्मी है। वाणी से बोलना हो तो हमेशा भगवान के नाम को उच्चारण करें। कान से सुनना ही हो, सुनना मजबूरी हो तो हमेशा जो है कथा श्रवण करें। ये जो है आहार की शुद्धि है। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण के निर्मल होते ही अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। और स्वरूप की अभिव्यक्ति का मतलब कि हम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। अब शेष कल विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

अस्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् विमलपटी कमलकुटी पुस्तक रुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलित विपंची विभासि वैरिंची वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।

0: पुनर्वदाचर्ष निप्रा उतद्बिबर्हा अमिनस्सोभिः अस्मद्यग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष तेजोनिर्महेन्द्राय त्वा महा इन्द्रो य ओजासा पर्जन्यो वृष्टिमा इव स्तोमैर्वत्सस्या वावृधे उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष तेजोनिर्महेन्द्राय त्वा इति सप्तमोऽध्यायः।
1: Om Namah Shivaya.
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

रूपाय भूतसंहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवायामिततेजसे अवस्थारहितायाथ

पवनहये दैत्यद्रुमकुठाराय नमस्ते शूलपाणये महादनुजनाशाय नमस्ते परमेश्वर अम्बिकापतये तुभ्यं नमः सर्वा।

विष्टरश्रवसे तुभ्यं नमः सत्यमयाय च सत्यप्रियाय सत्याय सत्यगम्याय ते नमः। नमस्ते मायिने तुभ्यं मायाधीशाय वै नमः। ब्रह्मगाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे ब्रह्मजाय च तपसे ते नमस्त्वीश तपसा फलदायिने। स्तुत्याय स्तुतये नित्यं स्तुतिसंप्रीतचेतसे। श्रुत्याचारप्रसन्नाय श्रुत्याचारप्रियाय च चतुर्विधस्व

नमस्तुभ्यं अकार परतारक प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुरघ्न महेश्वर नानावाच्याय देवाय वर्ण प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृते पुरुषात्पर निर्विकाराय नित्याय नित्यतृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गेशाय नमोस्तुते सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकिने सर्वज्ञाय शरण्याय।

0: सदाशिवाय रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढा मेद्य वर्धमाना भवत्विति। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम shaivam.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम ओम ओम। आदि गुरु शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रसंग है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ् निर्विकल्पम् पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्।

0: दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की व्याख्या के अंतर्गत सातवें स्तोत्र की व्याख्या है। बाल्यादिस्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। प्रसंग चल रहा है प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते, सोकर जगने के बाद मनुष्य प्रतिविज्ञा करता है। ये प्रतिविज्ञान के बल से ये सिद्ध होता है कि जानने वाला व्यक्ति एक ही है, साक्षी एक है, आत्मा एक है और नित्य है। प्रश्न उठा कि ये प्रतिविज्ञा क्या है, किसको कहते हैं प्रतिविज्ञा और प्रतिविज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो प्रतिविज्ञान का अर्थ और प्रतिविज्ञान का प्रयोजन, इस दो बात को स्पष्ट करने के लिए ये सातवां श्लोक आरंभ हुआ है। जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि प्रतिविज्ञा बलात् आत्मा स्थायी निर्धार्यते, यदि प्रतिविज्ञान के बल से यदि आत्मा को स्थायी नित्य और एक निश्चय करते हो तो ये बताओ कि कानाम प्रतिविज्ञेसः, ये प्रतिविज्ञा क्या है, इसको स्पष्ट कर दो। किं वा तस्याः प्रयोजनम्, और इस प्रतिविज्ञा का मूल प्रयोजन क्या है, इसे क्या सिद्ध करना चाहते हो। क्योंकि प्रमाण के द्वारा विचार करने वाले वैचारिक लोग, विचारकर्ता प्रतिविज्ञा को किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं लेते। आप लोगों ने कई बार सुना है कि प्रमाण वेदांत सम्मत, न्याय वैशेषिक सम्मत प्रमाण छह हैं, तो इन छह में से कोई केवल एक प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके अलावा और प्रमाण को मानता नहीं। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं, प्रमा ज्ञान का साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमा ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, और जिससे यथार्थ ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो कुछ लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण है प्रत्यक्ष। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, विषयार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। विषय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है, सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में इंद्रिय और विषय के बीच में कोई व्यवधान न हो, जैसे कान और शब्द के बीच में व्यवधान न हो, वह कान उस शब्द को प्रकाशित करेगा, ग्रहण करेगा, जानेगा। इसलिए शब्द को ग्रहण करने का जो प्रमाण है वह श्रोत्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। कान से सुनकर ये शब्द है ये निश्चय होगा, तो इसमें कान ही प्रमाण यानी श्रोत्रेन्द्रिय प्रमाण है। इसी प्रकार के चक्षु से रूप आदि का ग्रहण जो होता है वो भी सन्निकर्ष से ही होगा। सन्निकर्ष का अर्थ होता है अव्यवहितता, बीच में कोई व्यवधान न हो। तो आंख और पदार्थों के बीच में कोई व्यवधान न हो तब वह आंख उस पदार्थ को स्पष्ट ग्रहण करती है। तो आंख के द्वारा जो पदार्थ का इदमितम ये जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार के सन्निकर्ष रस और जिह्वा, अव्यवहितता रस और जिह्वा के जो सन्निकर्ष है उसके द्वारा इदमितम जो ज्ञान होगा कि ये ऐसा है, मधुर है, लवण है, कषाय है, कटु है, तिक्त है इत्यादि, ये रासन प्रत्यक्ष होगा, रसन इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा। ऐसे अन्य इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का ग्रहण होकर पदार्थों का ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत से लोग केवल एक प्रमाण मानते हैं, ये प्रमाण से सारा लोक व्यवहार चल जाएगा और बहुत प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। और लौकिक व्यवहार में लगभग 99% काम इसी प्रत्यक्ष से ही चलता है, लेकिन 100% काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 100% चल जाएगा, तो कहीं कहीं नहीं चलता है, तब फिर प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान करना पड़ता है, जो कि इंद्रिय और पदार्थ का ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष सन्निकर्ष नहीं है, फिर भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए अनुमान करते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, उस पहाड़ में जरूर अग्नि है, तुम कैसे निश्चय कर रहे हो? अग्नि देखकर? बोले देख तो नहीं रहे, फिर कैसे निश्चय कर रहे हो? धुएं को देखकर। तो धुएं को देखकर तो धुएं का निश्चय होगा, अग्नि का तो होगा नहीं, क्योंकि जो देखोगे वही निश्चय होगा। देखा तुमने धुएं को और निश्चय कर रहे हो अग्नि को, ये कैसे हो गया? साचर्य नियम के द्वारा व्याप्ति स्मरण करके निश्चय होता है कि अग्नि प्रत्यक्ष न होने पर भी अग्नि का ज्ञान होता है। कैसे होगा? तो बोले अनुमान से हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति यह है कि जहां जहां अग्नि है वहां धुआं रहता है, व्यक्ति यह है। इसीलिए यहां धुआं है इसका मतलब अग्नि जरूर है, प्रत्यक्ष न दिखता हुआ भी अग्नि का निश्चय हो गया है, ये अनुमान जन्य ज्ञान है। इसी प्रकार के उपमा जन्य ज्ञान होता है, गो सदृश गवय, गवय कैसे होता है? गवय एक पशु विशेष है, नील गाय को ही गवय कहते हैं, गवय एक पशु विशेष है, लेकिन गवय का ज्ञान कैसे होगा? तो बताया कि गाय जैसा ही होता है, तो गो सदृश गवय, तो गाय को तो उसने देख रखा था प्रत्यक्ष, लेकिन गवय को देखा नहीं था। अब कालांतर में वह जंगल में गया और गाय जैसा ही एक पशु देखा, तो उसको स्मृति आई, यह है उपमा, गाय ऐसा है, गुरु ने कहा था गाय जैसा ही होता है गवय, तो वहां गवय देखने पर उसको यह उपमा स्मरण हुआया कि यह गवय यानी नील गाय है, उसको पक्का निश्चय हो गया है, ये उपमा ज्ञान कहते हैं, गाय गो सदृश गवय इत्यादि। शब्द प्रमाण है, किसी के द्वारा कोई कह दिया है, आप तो वाक्य ने कहा, जिस पर हमको पूरा श्रद्धा है विश्वास है, उसने कहा कि ये ऐसा है तो हम उसको मान लेते हैं। जैसे हमारी मां ये कह देती है कि ये तेरा बाप है तो हम मान लेते हैं, वहां अनुमान काम नहीं आएगा। आप अनुमान करने लग जाओगे तो वह अनुमान व्यक्ति दोष से दूषित हो जाएगा। किसी पुरुष के बिना बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो ये पुरुष है इसलिए ये मेरा बाप है, तो जिसको भी तुम अपना बाप सिद्ध कर जाओगे, तो क्योंकि प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होगा, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता है और उपमा भी संभव नहीं है, तो आप तो वाक्य ही वहां काम करता है, यथार्थ बता देने वाला जो व्यक्ति है उसको विश्वास करके ही उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। यानी बाप का प्रत्यक्ष कब होगा? मां के कहने से ही होगा। आजकल तो मां ना भी कहें तो भी और डीएन परीक्षण क्या क्या करते हैं ना, वो डीएनए, तो आजकल तो वो डीएनए कह देगा कि तेरा बाप ये है, मां के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले डीएनए नहीं था तो मां के ही कहने से बाप प्रत्यक्ष होता था, ये मेरा बाप है। देखो कब होगा तो मां कहेगी। इसीलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अर्थापत्ति माने ऐसा नहीं है फिर भी यह है, तो इसका मतलब यह है। तीनों देवदत्ता दीवान भुंगते, देवदत्त बड़ा मोटा है लेकिन ख्याल रखना दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि वो रात को खाता है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, होता तो मिलता है इसलिए नहीं मिल रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि यह नहीं है, ये अनुपलब्धि प्रमाण। खरगोश के सिंह नहीं होते, इसमें क्या प्रमाण है? अनुपलब्धि प्रमाण है। खरगोश का सिंह होता तो उपलब्ध होता, किसी न किसी को होता, दुनिया में कहीं भी किसी को भी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए सिद्ध होता है कि खरगोश का सिंह होता ही नहीं। अनुपलब्धि आदि प्रमाण, अभाव को सिद्ध करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभाव भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो जाएगा चाहे कुछ भी हो। दार्शनिकों ने, विचारकों ने छह प्रमाण माने हैं, लेकिन इन छह प्रमाणों के अंतर्गत ये प्रत्यभिज्ञा एक भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का नाम है कि अनुमान का नाम है कि उपमा का नाम है कि आप्तवाक्य का नाम है कि शब्द प्रमाण का नाम है कि अनुपलब्धि है कि अर्थापत्ति है, इन छह में से एक भी। तो आपने प्रतिविज्ञा से ज्ञान होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा एक सिद्ध होता है, प्रतिविज्ञा से आत्मा नित्य सिद्ध होता है, ये जो कहा है प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रतिविज्ञा को क्यों माना जा रहा है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो प्रत्यभिज्ञान के बिना अनुमान भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना प्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना उपमा भी सिद्ध नहीं होगा। इन सब के पीछे एक वस्तु काम करता है, वो ही है प्रत्यभिज्ञान। ये वेदांत का रहस्यमय शब्द है प्रत्यभिज्ञान। जैसे दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता सिद्ध करनी हो तो प्रत्यभिज्ञा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 15 वर्ष पहले जो पेड़ किसी स्थान में आपने देखा था, उस समय जिस समय आपने देखा और जाना पूछा और आपको ज्ञान हुआ कि ये वटवृक्ष है, 15 वर्ष पहले वो वटवृक्ष का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, हुआ कि नहीं? अब 15 वर्ष के बाद फिर आप उसी जगह जाओगे तो वह वटवृक्ष का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? 15 वर्ष के बाद जब जाओगे उसी जगह पर, वही वटवृक्ष वहां खड़ा है, तब फिर आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कि नहीं? हो जाएगा। 15 वर्ष के बाद भी जब उसको आपसे आंखों से देखोगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तब 15 वर्ष पहले जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था उसमें कोई प्रत्यभिज्ञान नहीं थी, बात समझ रहे ना? वहां केवल प्रत्यक्ष था। पहली बार जिस पदार्थ को आपने देखा था वह केवल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि यह वटवृक्ष है, यह निश्चय हुआ आपको। 15 वर्ष के बाद जब आप गए तब भी वह वृक्ष दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हुआ। लेकिन इसके बीच में आपको एक स्मरण हुआ आया, ये वही वृक्ष है, यह वही वृक्ष है, ये जो स्मरण हो आया तो वह 15 वर्ष पहले प्रत्यक्ष दिखे हुए बड़ वृक्ष में और 15 वर्ष के बाद आज प्रत्यक्ष दिखता हुआ बड़ वृक्ष के बीच, दोनों प्रत्यक्ष के विषय में एक रूपता सिद्ध करने वाला प्रत्यभिज्ञा है। आप समझ गए कि नहीं? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में और प्रतिविज्ञा में ये अंतर है। प्रतिविज्ञा पहली बार पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वहां प्रतिविज्ञा की भूमिका नहीं रहती है। जैसे जब भी आपने पहली बार मुझे देखा होगा तो उस समय प्रत्यक्ष से देखा और निश्चय हो गया कि स्वामी आत्मानंद गिरी नेपाल वाले हैं। पक्का हुआ कि नहीं आपको? है पहली बार जो ज्ञान हुआ आपको, वह उसमें प्रतिविज्ञान की भूमिका नहीं है, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की भूमिका है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि स्वामी आत्मानंद जैसे हैं वैसे हैं, तो आपको पूरा ज्ञान हो गया। अब एक वर्ष के बाद फिर उसी महात्मा को आपने देखा, तो एक वर्ष के बाद भी आपको प्रत्यक्ष ही हुआ, आंखों से देखा, प्रत्यक्ष ही हुआ। परंतु ये एक वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष हुआ, उस प्रत्यक्ष के बीच में आपको एक दूसरा निश्चय हुआ कि ये आत्मानंद वही आत्मानंद है जो पिछले साल आए थे, ये वही आत्मानंद है। ऐसा होता है ना, किसी की जब तक स्पष्ट नहीं होता है, दूसरी बार प्रत्यक्ष नहीं होता, पहली बार प्रत्यक्ष हुआ, पिछली बार सुना आत्मानंद गिरी जी का प्रवचन, अब एक दो दिन आकर सुना था, एक दो दिन आकर सुने थे, उसके बाद आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब दूसरे साल जून महीने में कौन आएगा, दिमाग में ये जिज्ञासा उठी है, जानने की इच्छा हुई, तो प्रेम प्रियाश्रम का वो वार्षिक कार्यक्रम का बुक दे दिया और देखा उसमें आत्मानंद गिरी, तो नाम पढ़ लिया आत्मानंद गिरी। लेकिन इतनी में से क्योंकि एक दो बार ही देखा था, वो दिमाग में फेस वो संस्कार पूरा पक्का हुआ नहीं था, आत्मानंद गिरी कौन महात्मा है, आत्मानंद गिरी स्मरण नहीं हुआ था, उसकी पिक्चर दिमाग में नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन है, कितने महात्मा है, आते हैं हर साल, पता नहीं कौन है कौन है। तो नीचे बोर्ड में भी देखा आत्मानंद गिरी, तो आए प्रवचन सुनने के लिए, तो बोर्ड में लिखा स्वामी आत्मानंद गिरी, दिमाग में फेस नहीं आ रहा है। हॉल के अंदर जब घुसे तो प्रत्यक्ष हो गए, है ना, एक वर्ष के बाद फिर प्रत्यक्ष हो गए, तब आपको वो स्मरण हुआ आया कि अरे ये तो पिछली बार भी आए थे, हाँ ये तो वही है जो पिछली बार आए थे। ये प्रतिविज्ञा, दो प्रत्यक्षों के बीच में एक रूपता को सिद्ध करने वाले जो विषय है उसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रतिविज्ञा न होती तो आप ये निश्चय नहीं कर पाते कि ये वही महात्मा है, आपको फिर यही होता कि ये नया महात्मा है। खाली प्रत्यक्ष होता तो आप एक साल के बाद फिर देखते, फिर आपको कहते ये नया महात्मा है, फिर दूसरी बार देखते प्रत्यक्ष आकर तो बोले ये तीसरी बार जो देखा ये नया महात्मा है। तो जब भी आप देखोगे तब नया महात्मा ही लगेगा, नया ही महात्मा होगा, आत्मानंद हर साल नया महात्मा हो जाएगा, प्रत्यविज्ञा यदि बीच में न हो तो। बात समझ गए कि नहीं? हर साल प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखते ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हर साल नया महात्मा हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये वही आत्मानंद जी हैं, दूसरा आत्मानंद नहीं है, ये प्रतिविज्ञा है। प्रत्यक्षादि प्रमाणेषु प्रत्यविज्ञान पठ्यते कथं तस्याः प्रमाणत्वं इति वृच्छन् प्रबोध्यते। इस तरह जिज्ञासु ने जब पूछा, प्रतिविज्ञा किसी भी प्रमाण के अंतर्गत न होने के कारण आपने प्रतिविज्ञा को बीच में क्यों लाया, तो उसका उत्तर देते हैं, प्रत्यविज्ञा के बिना कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, अनुमान भी प्रत्यविज्ञा के बिना सिद्ध नहीं होगा। जैसे आपने यहां बैठकर पहाड़ में धुआं देखा और ये अनुमान कर ली कि व्यक्ति स्मरण हुआ, जहां अग्नि रहता है वहां धुआं रहता है, धुआं दिखाई पड़ा, इसका मतलब वहां अग्नि जरूर है, तो यह अनुमान से आपने वहां अग्नि निश्चय कर लिया। अब उस अग्नि को प्रत्यक्ष करने के लिए आप चले गए पहाड़ में, चढ़ाई की और अग्नि दिखाई पड़ा, तो पहले आपने अनुमान किया, अब प्रत्यक्ष हो गया वो अग्नि, तब उस समय क्या हुआ था आपको, जिस समय अग्नि प्रत्यक्ष हुआ पहाड़ में पहुंचने के बाद, वहां आपको प्रतिविज्ञा ने काम किया। क्या? मैंने अनुमान से जिस अग्नि को सिद्ध किया था यानी निश्चय किया था यह वही अग्नि है, यह प्रतिविज्ञा। नहीं तो अनुमान और प्रत्यक्ष के बीच में कौन समन्वय करेगा?
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Siruthunai Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhaktam, abhi hum aur ek shivbhakt ya sant ki kahani sunenge jinka naam Cherutunayar hai. Yeh ek uch koti ke Nayanmar hai. Cholamandal mein Mirudunadu namak ek pradesh hai. Yahan prachin kaal se hi Tanjavur mein vivekshil, aantarik aur bahir roop se sadachar ka पालन करने वाले शिष्ट जन निवास करते हैं। इसी स्थल में एक कृषक परिवार में जन्म हुआ चेरुतुनयार का। ये सदा शिव की भक्ति में लीन रहते और शिव स्नेहियों की सेवा में

0: इस कार्य को शिव अपराध मानकर चिरतमेयर ने रानी की नासिका काट डाली। राजा के पूछने पर निर्भय करके होकर उन्होंने अपने कृत्य को स्वीकार किया। प्रिय पुराणम में इनको भी शिव के प्रति अनन्य भाव के लिए और उनकी सेवा के लिए भगवान के भक्त के रूप में स्मरण किया गया है। अंत में वे शैव संत शिव के चरण कमल में अमरता के आनंद में लीन हो गए। प्राचीन काल की इस कथा में वर्णित घटना से जिस तर्क ही कट्टरता का बोध होता है वह उस युग का प्रमाण देता है। कालांतर में उसका परिमार्जन हुआ, मानव प्रेम और दया को प्रमुख स्थान मिला और नटराज शिव के भक्तों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रमुखता दी। इसीलिए चिरतमेयर एक उच्च कोटि के संत बने, क्योंकि उनसे भगवान के प्रति कोई भी गलती नहीं निंदनीय थी। इसीलिए उन्होंने यह भी सोचा नहीं कि ये तो एक बड़ी महारानी है, मैं कैसे इनके समक्ष इनको दंड दे सकता हूँ। एक शिव भक्त के लिए उनके सबसे बड़े महाराज भगवान शिव हैं, क्योंकि इस दुनिया के ही नहीं बल्कि अपितु इस संसार के भी महाराज हैं। इसलिए अपने इष्ट देव की निंदा जो कि अबोध में हुआ, फिर भी उन्होंने रानी को क्षमा नहीं किया परंतु उन्हें दंड दिया। ओम नमः शिवाय।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham Charu Chandra Vatansam रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथ शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथ पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तूटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्तिः।

0: पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक विशेष प्रवचन माला का ये आज द्वितीय दिवस, दूसरा श्लोक।
1: गलंती संभोत्वत्

ब्रह्मण परितापोशमनमं वसन्तीमच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी त्रयी विद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि

0: यतां दिशन्ति संसार भ्रमण परितापोपशमनम् वसन्ति मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी। शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, शंभो, सम्यक भवति इति शंभो, संभवति इति शंभो। संसार में जो अच्छी तरह रहता है उसका नाम शंभो, और संसार में जिसके स्मरण मात्र से कल्याण होता है वह शंभो। शंभो सम्यक भवति, सम कल्याणम भवति। कल्याण करने वाला होने के कारण भगवान शिव का नाम पड़ा शंभो। किसका कल्याण करेंगे? सभी का कल्याण करेंगे। देखो, भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि भूतों का भी कल्याण करते हैं। तो जब भूतों का भी प्रेतों का भी कल्याण करते हैं तो क्या हमारा कल्याण नहीं करेंगे क्या? हैं? बोलो। किसी ने कहा भगवान शिव मशान घाट में क्यों बैठते हैं, शमशान घाट में क्यों बैठते हैं भगवान शिव? शिव से पूछा होगा किसी ने कि आप यहां क्यों बैठते हैं, आपके लिए रहने के लिए अच्छे अच्छे जगह हैं, बंबई में आओ, मलबार हिल रहो, मरीन ड्राइव में रहो, नेपियंसी रोड में रहो, है? चंदनवाड़ी में क्यों रहते हो, है? किसी ने कहा ना, तो भगवान शिव ने जवाब दिया, पता है क्या जवाब दिया है? मलबार हिल में रहने वाले जब घर से निकालेंगे तो उसको संभालेगा कौन? जब वो मलबार हिल में रहने लायक नहीं रहेगा तो सब लाएंगे यही चंदनवाड़ी, तो फिर उसको संभालेगा कौन? उसका बेटा भी नहीं संभालेगा, उसकी पत्नी भी नहीं संभालेगी, उसका पति भी नहीं संभालेगा, उसके बहू नहीं संभालेंगे, नाती पोते नहीं संभालेंगे, भाई बंधु कोई नहीं संभालेंगे, तब फिर सब लोग उसको उठा कर लाएंगे या मेरे हवाले करेंगे, तो मुझे संभालना पड़ेगा ना उसको। बोलो, इसके लिए मुझे यहां, कोई यहां रहने को तैयार नहीं है। कृष्ण से कहा तुम यहां रहो, इन लोगों को संभालो। कृष्ण ने कहा कि नहीं बाबा, भूत प्रेत यहां घूमते, हम नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने देखा है, कहीं सुना है शास्त्र में कृष्ण मशान घाट में रहते हैं? सुना है शास्त्रों में? बोलो, है? कहीं सुना है, किसी शास्त्र में सुना है कृष्ण कहां रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। कहां क्रीड़ा करते हैं? तो जमुना के यमुना पुलिना, जमुना के किनारे में क्रीड़ा करते हैं। विष्णु को कहीं सुना है शास्त्रों में को मशान घाट में रहते हैं? नहीं सुना ना? सारे शास्त्रों में सभी देवी देवताएं मशान घाट में रहते हैं ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया। हां, एक महिला है, बड़े साहसी हैं, उन्होंने साहस किया है भगवती शिव की पत्नी पार्वती, क्योंकि श्रीमान वहां रहेंगे तो श्रीमती भी वहीं रहना पड़ेगा ना, है? आज का युग तो है नहीं कि श्रीमान कहीं रहे और श्रीमती कहीं और रहे, वो तो उस जमाने का युग था, श्रीमान जहां रहे श्रीमती वहीं रहे। इसलिए दुर्गा सप्तशती पढ़ो, भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, उनको भी यही कहा, शमशानेश्वर क्रीड़ा, वो भी शमशान में ही क्रीड़ा करती है। क्योंकि उनके शिवजी जब शमशान में क्रीड़ा करते हैं तो पार्वती कहां रहेगी, कोई मलबार हिल में थोड़ी रहेगी। तो पुष्पदंताचार्य जी ने शिव का निवास स्थान बता दिया ना, श्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। देख लो, तो विष्णु को कहा तुम रहो, तो बोले नहीं बाबा हम नहीं रहेंगे। और कृष्ण को कहा, वो भी कहने लगे कि हम नहीं रहेंगे। गणेश को कहा नहीं नहीं आप वहां रहो, आप रहो हम नहीं रहेंगे। बोले तू पहले पैदा तो वहीं हुआ है, मां बाप जहां रहेंगे बच्चे वहीं पैदा होंगे ना। बोले पहले तो छोटे बच्चे थे, हम कुछ जानते नहीं थे, अब तो बड़े हो गए हम, अब मशान घाट में नहीं रहेंगे। देख लो गणेश को क्या कहते। क्या एक बार कहीं गया था, बड़ा साइन बोर्ड, कहां का राजा, अलीबाग का राजा, क्या लालबाग का राजा है, तो वो तो लालबाग के राजा है, चंदनबाड़ी के राजा थोड़ी है वो। भगवान शिव कहां के राजा है, चंदनबाड़ी के राजा। और क्या संभो, कल्याण करने वाले। तो शिव ने पूछा कि तुम मशान घाट में क्यों रहते हो। बोले और सारी देवता तो और जगह कल्याण कर देते हैं, लेकिन मशान घाट में और कोई कल्याण करने के लिए नहीं आता, इसलिए वहां आने पर मुझे कल्याण करना पड़ता है उन लोगों को, इसलिए मैं उनका भी कल्याण करता हूं। पिशाचा सहचरा, भूत का भी कल्याण करना है, प्रेत का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण है। सर्प का भी कल्याण करना है, बिच्छू का भी कल्याण करना है कि नहीं बोलो। नहीं तो क्या जहरीला को किसी ने आभूषण बनाया हुआ देखा है कहीं, विष्णु ने नाग को आभूषण बनाया कहीं देखा सुना है, कृष्ण ने नाग को आभूषण बनाया, उसका तो नाथ दिया, जीवन ही खत्म कर दिया, जीवन सही तो उसको हृदय में लगाया किसने, बोलो। कृष्ण ने तो सिर में ऐसा दबा दिया कि बेचारा उसका प्राण ही निकल गया। क्यों मारा सर्प को, नाग को क्यों मारा कृष्ण ने, नाग क्यों ना था, क्योंकि उसमें जहर है, जहर है, इसी अपराध से उसको मार डाला कृष्ण ने। और शिव ने क्या किया, जहर तो है, जहर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको मारे डालो, है ऐसा नहीं है, वो जहर भी प्रयोजनात्मक है, इसीलिए उसको उन्होंने हृदय से लगाया। शिवपुराण का शिव चरित्र सुनो, क्या गजब का प्रसंग आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सब लोग त्राही त्राही हो गया, तो भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस जहर को हाथ में अंजलि में ली और पान कर गए। पीने लगे तो लक्ष्मी जाकर हाथ जोड़ने लग गई शिव जी से, महाराज गले से नीचे नहीं उतारना। बोले क्यों नहीं उतारना भाई, हमारी मर्जी हम उतारेंगे। बोले नहीं तुम तो उतारोगे, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, मेरा पति तो वही तुम्हारे हृदय में बैठा बेचारा, उसका क्या होगा है। बोलो लक्ष्मी ने कहा नीचे नहीं उतारना महाराज, तुम्हारे हृदय में तो मेरा पति बैठा है, और तुम उसको नीचे उतारोगे तो उसका नुकसान होगा, इसलिए महाराज नीचे नहीं उतारना। अब देवताओं ने सबने देखा कि लक्ष्मी जाकर उसको नीचे उतारने से रोक रही है, अब कहीं भगवान विष्णु लक्ष्मी का माने भगवान शिव लक्ष्मी के बात पर आकर उसका नीचे नहीं उतारा, बाहर फेंक दिया, तो फिर हमारी समस्या होगी। सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महाराज इसकी बात पर नहीं आना, ये तो बड़ा स्वार्थी है। क्यों महाराज, बोले अपने पति को बचाना चाहती है, वो जानती है कि तुम्हारे हृदय में उसका पति बैठा है, उसको रोकना चाहती है, इसलिए वो बड़ा स्वार्थ से आपकी अपनी बात कह रही है, और उसकी बातों पर आकर आपने उसको बाहर फेंक दिया तो फिर हमारा क्या होगा है? उसके तो एक पति की रक्षा करने के लिए यहां बाहर फेंक दोगे, न जाने कितनों के पति का नाश होगा, बोलो है? बहुत से महिलाओं के, बहुत से स्त्रियों के पति का रक्षा करना है कि एक महिला के पति की रक्षा करना है, एक के चलते हजारों का नाश नहीं करना महाराज, बाहर नहीं फेंकना, कृपा करो। अब भगवान शिव के सामने धर्म संकट पड़ गया कि नहीं बोलो, है लक्ष्मी कह रही है अंदर नहीं उतारना, और सारे प्राणी कह रहे हैं कि बाहर नहीं फेंकना, तो उन्होंने मध्यम मार्ग कर ली, बोले न बाहर फेंकेंगे न नीचे उतारेंगे। हा, अपने प्राण को समष्टि प्राण में धारणा करके रोष शक्ति का स्मरण किया और सारे विष को पचा दिया, और एक निशानी तो रख दिया, नहीं तो जीव तो बदमाश है वो। हा, काम बन जाने के बाद वो ठेंगा दिखा देते जीवात्मा। हा, अपने काम जब तक नहीं बने तब तक तो हाथ जोड़ते फिरेंगे, और काम बन जाए तो ठेंगा दिखा देंगे ये लोग। कल जाकर यदि भगवान शिव कहे तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने विष पान कर ली, और आज का कोई व्यक्ति शिवशी से कहे तुमने विष पान करके पृथ्वी को शुद्ध बनाया और पृथ्वी की रक्षा की, इसमें क्या प्रमाण है? हम क्या प्रमाण देंगे भाई, यदि विष को हजम कर देंगे तो उनके प्रमाण दिखाने के लिए थोड़ा सा निशानी रख दिया कंठ में। हाँ, तब उसका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। आप लोग बहुत समझदार हो, हम तो ऐसे ही समय पास कर रहे हैं भाई। उनका नाम क्या हुआ? नीलकंठ। आज तक प्रमाण है, कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो देखो ये हमने जहर पी थी। हाँ, और उसको पता है, ये अभी रखा है निशानी, ये प्रमाण है। तब से लेकर आज तक सभी लोग भगवान शिव के अनुग्रही हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं, नीलकंठम विशालम। अब जब हाथ में अंजुली लिया और अंजुली से पान कर रहे थे तो हाथ के छिद्रों में से कुछ बूंदे नीचे गिर गई है। अब क्या करें भाई? तब सब लोगों ने कहा महाराज नीचे गिर गया और वही भयंकर पृथ्वी में फैल जाएगा, फिर सर्वनाश करेगा। अब भगवान शिव उसको चाटे है? जो अंजुली से पान करने वाला है वो चाटेगा क्यों भाई, बोलो? जो गिलास भर के दूध पीने वाला है वो दूध के एक बूंद नीचे गिरने से जुआ से क्यों चाटने जाएगा, बोलो? भर भर के अंजुली से विष पीने वाला व्यक्ति नीचे गिरा हुआ एक बूंद जहर को पीने चाटने जाएगा वो? लेकिन सबका हल्ला करने लग गया कि वो रह जाएगा, उसका क्या करेंगे? अब गिर गया आपके हाथ से। भगवान शिव ने बिच्छू और सर्प को कई सारा किया कि चाटो बेटा, तुम लोग रहने न दो, हाँ तुरंत चाटो, नहीं तो ये फैल जाएगा सारा पृथ्वी में। तो सर्प और बिच्छू दोनों ने चाट लिया। तो पूछा कि अब तो हो गया काम, बोलो? देवताओं ने, मनुष्यों ने, असुरों ने, सब ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अब हमारा काम बन गया आपकी कृपा से, अब भुवन भय भंग व्यसनिना, अब संसार का असमय में प्रलय होने का जो डर था, उस डर से उस भय से हम मुक्त हो गए, निवृत्त हो गए, आपकी जय हो, आपका हम हमेशा ऋणी रहेंगे। भगवान शिव तो चले गए। अब इधर सर्प और बिच्छू घूमने लगे तो जो देखे उसको डंडा मारे है? देवता लोग महादेव को भी सब स्मरण करे, देवता लोगों को भी यज्ञ में भाग मिले, लेकिन बेचारा पृथ्वी की रक्षा करने वाले जो सर्प और बिच्छू है कोई उसके नजदीक फटकने नहीं दे। बोलो, यज्ञ कहीं होता है, देवताओं को बुला बुला कर इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः, इदम वरुणाय स्वाहा है, सबको भाग मिलता है, और हम भी जाते कुछ थोड़ा भाग मिलेगा है? यज्ञ में यज्ञ हो रहा है, हमको भी थोड़ा भाग मिलेगा। जब हम जाते हैं तो हमको डंडा दिखाकर भगा देते हैं, अंदर घुसने नहीं देते। महाराज ये आपके कहने से जहर चाट ली, पृथ्वी की रक्षा कर दी, आज सबके द्वारा तिरस्कृत हो गए है? विषपान करके भी आप शंभु भय जगदीश है? देख लो, मान सहित विष पान विष पी के शंभु भय जगदीश है। देखो बोलो, बकरे ने, कबीर जहाज जी का शायद वचन है ये, बकरे ने मैं किया तो कटाया शीश, मान रहित और नहीं दक्ष ने मान रहित होकर अभिमान से दक्ष का सिर कटा और मान पूर्वक विष्पान करने से शंभु भय जगदीश। पूरा कविता मुझे याद नहीं आई लेकिन उसका भाव यही है। माने रावण के तो नाभि में अमृत था तो कटाया सिर, देख लो। नहीं, रावण का इतिहास क्या है, पैदा होते ही उसके नाभि में अमृत था, उसको मरना संभव ही नहीं था, तो भी अभिमानी घमंडी होने के चलते तो उसका सिर कट गया, मर गया वो। लेकिन मान सही सभी देवताओं ने मान दिया और मान पूर्वक तुम्हारा सम्मान का आदर करते हुए मैं विष भी पी जाऊंगा, भगवान ने विष पान कर ली तो वो जगदीश हो गए हैं। और राहु कटाए शीश, देख लो, मान रहित विष अमृत पी के राहु कटाया शीश। राहु को किसी ने बुलाया नहीं था, बुलाया था अमृत पीने के समय में, किसी ने नहीं बुलाया था, लेकिन वो छुप कर गया अमृत पीने के लिए। और अमृत पीकर भी परिणाम क्या हुआ कि उसका सिर कट गया और भगवान शिव ने मान सहित जहर पी लिया तो जगदीश हो गए। तो बिच्छू और सर्प ने कहा, महाराज अब हमारा क्या होगा, यदि ये हाल होगा ये हमको पहले पता होता तो हम नहीं चाटते, इतना बड़ा उपकार का काम किया फिर भी हमारा तिरस्कार, ये तो अन्याय हो गया। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन किया है तुमने, इसलिए दुनिया तुमको मान दे चाहे न दे, मैं तुमको जरूर मान देता हूं। कैसे महाराज? बोले देख, सर्प को पकड़ लिया और सिर ले तो सबसे ऊपर रख देता हूं तेरे को, ले गंगा जी के साथ बैठ जा ऊपर। सबने तिरस्कार किया और भगवान शिव ने लगा दिया ऊपर। सर्प तो पहुंच गया भगवान सिर मस्तक में और गले में बाजुओं में है, देख लो। और बिच्छू कहने लगा, महाराज हमारा क्या होगा? उन्होंने कहा कि उसको पकड़ लिया, एक इधर लगा दिया, एक लगा दिया, झुमका बना दिया, कुंडल बना दिया, और क्या, आह शिवजी मस्त हो गया है, दो कुंडल बना दिए, बिच्छुओं को कान का कुंडल बना दिया, सर्प को आभूषण, ये आगे आएगा यहां, ऐसे हैं शंभु। हे शंभु, सबका कल्याण करने वाला, बिच्छू का भी कल्याण करने वाला, सर्प का भी कल्याण करने वाला, मरे हुओं का भी कल्याण करने वाला, जिंदों का भी कल्याण करने वाला, भूत प्रेतों का कल्याण करने वाला, देवी देवताओं का कल्याण करने वाला, मनुष्य यावत जीवों का कल्याण करने वाला होने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ा? शंभो। हे शंभो, गलंती शंभो त्वत् चरित सरित किल विसरजो दलंती त्वच्चरित। हे शंभो, माया के आश्रय से यानी शक्ति के आश्रय से, पार्वती के आश्रय से, पार्वती शक्ति माया जो कहो उनके आश्रय में रहकर आपने जो जो संसार के उद्धार के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए जो जो काम किया है, उन सारे काम ही आपका दिव्य चरित्र है ना? आपका ये उत्तम कीर्ति, उत्तम चरित्र। तो चरित सरित है, तो चरित चरित एव सरित, सरिता नदी जल, भगवान शिव के दिव्य चरित्र रूपी जल सरिता नदी। देखो बारिश हो गई ना बंबई में, आज तो खूब जमकर बारिश हो गई है, वाह, जिधर देखो उधर ही बह रहे हैं पानी, जिधर देखो उधर पानी बह रहा है। जहां गंदा से गंदा दुर्गंध युक्त पानी बह रहा था वहां आज दिव्य क्या कंचन पानी बहने लग गया, सारा गंदगी को भगा के ले गया, समुद्र खाड़ी में डाके डाल दिया उसने। किसने? बारिश मेघ जब बरसा तो उसके पानी होने नाले साफ हो गए। बीएमसी क्या नाला साफ करेगा बारिश सब साफ कर गया। पत्ते हम पहले देख रहे थे प्रेमपुरी आश्रम के बाहर, एक है ना पेड़ रबड़ प्लांट का है, रबड़ प्लांट, ओ पक्षियों के बिस्टा और धूल इतना काला इतना गंदा था देखने लायक नहीं था, पर आज देखा तो क्या चमक क्या सुंदर क्या निर्मल है। सारी गंदगी को बहाया किसने? बारिश के पानी ने। क्या नदी के पानी या धार नलके के पानी से उस पेड़ के सारे पत्तों को धोना संभव होता है? संभव होता? और वो संभव कर दिया कि नहीं मेघ ने? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे शिवा हे शंभो तो चरिता सरिता, आपके दिव्य उत्तम चरित्र जो लोक हितकारी हैं लोक कल्याणकारी हैं, जब आपके दिव्य चरित्रों का हम स्मरण करते हैं गान करते हैं बखान करते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: सभी ने कहा जब सब राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन होगा? उसने कहा कि आप चिंता मत करो, सबको राजा बनाएंगे पर एक शर्त है। वह शर्त यह है कि एक वर्ष के लिए सब राजा बनेंगे, एक एक वर्ष के लिए बांट दिया, सबका ऊपर नीचे नाम लिख लिया, क्रम से सबके सब एक एक वर्ष तक राजगद्दी पर बैठेंगे। सभी बड़े खुश हुए, पर बोला कि अभी हमारा वाक्य अधूरा है, राजा तो बनेंगे पर एक शर्त है, एक वर्ष के बाद सबको नदी के उस पार छोड़ दिया जाएगा और वहां पर वे जंगली जानवरों के भोजन बन जाएंगे। सब घबराए, बोले कि राजा बनेंगे, एक वर्ष तक तो मजे से जीवन यापन करना है, और जैसे एक वर्ष बीतेगा 12वां महीने आते ही जबरन नदी को उस पार भेज देंगे, वहां पर भेड़ सिंह भालू का आहार बन जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, वह तैयार हुआ। राजा ने कहा कि शपथ लेने के पहले सोच लो, शपथ पत्र पढ़ने के पहले सोच लो कि एक वर्ष तक तो राजा बनोगे, परंतु 12वें महीने जबरन हम तुमको उस पार भिजवा देंगे। उसने कहा कि मैं तैयार हूं। जो राजा बनने वाला था उसने तर्क किया कि एक वर्ष के लिए राजा बनूंगा तो मेरे अधिकार क्या होंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकार आप कुछ सब कुछ मिलेंगे, आप जो चाहें सो सब कर सकते हैं, यहां तक कि सभी आपके प्रजा होंगे, मैं भी आपका प्रजा, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा, जो कहेंगे सब हम लोग करेंगे, आपके लिए गला भी कटा सकते सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा बहुत अच्छी बात, शपथ ग्रहण कर लिया, एक वर्ष के राजा बना दिया। राजा बनने के बाद 3 दिन तक तो अपने राज्य के खजाना का संपत्ति का उसने पूरा मुआयना किया। 3रे दिन घोषणा कर दिया कि हमारे राज्य में जितनी सेनाएं हैं सारी सेना इस पार उस पार एक ब्रिज पुल बनाने के लिए लगा दिया जाए, सारी सेना को राज से एक पुल बनाने के काम में लगा दिया, इस पार से उस पार नदी को उस पार जाने के लिए पुल। बड़ा सुंदर 4 महीने पुल तैयार हो गया। 4 महीने के बाद फिर एक संसद बुलाया, उसमें बड़े बड़े जाने माने कारीगर थे, विद्वान थे, प्रधानमंत्री थे। सबके सामने कहा कि देखो हमारे शासन के 4 महीने बीत गए और हमने बड़ा सुंदर नदी को उस पार जाने के लिए सेतु बनवा दिया है, अब हमारे रह गए 8 महीने। 8 महीने में से 4 महीने निकाला और कहा 4 महीने में जैसा ही राजमहल है ना बिल्कुल ऐसा ही उस पार तैयार होना चाहिए। सारे सैनिकों को लगा दिया, 4 महीने के अंदर बड़ा सुंदर जंगल में राजभवन बनवा लिया, बाग बगीचे लगा दिए गए, फूल फुलवारी लगा दी गई। 8 महीने हो गए, प्रधानमंत्री को बोला कि देखो 8 महीने बीत गए, अब रह गए हमारे 4 महीने। 2 महीने में उसने सबको बोल दिया कि उस पार सारे जितने भी भंडार है भंडार को भर दो, सोने चांदी से अनाज से भर दो। 2 महीने के अंदर पूरा खजाना जंगल के उस पार जो नया राजमहल था वहां भरवा दिया, साज बाज सब करवा दिया। अब सारी सेना को बुलाया, प्रजा को बुलाया, प्रधानमंत्री को बुलाया, बोला देखो 10 महीने हमारे शासन के बीत गए और तुम लोग जबरन हमको उस पार भेजोगे ना, इसकी अपेक्षा मैं आज ही इस्तीफा दे रहा हूं, अपना तुम लोग नया राजा चुन लो और मैं अब उस पार जा रहा हूं और पैदल चलकर जाऊंगा, तुमको भेजने की जरूरत नहीं। सब ने हाथ जोड़कर बोला कि महाराज अब उस पार जाने से क्या फायदा, आपने तो यहां से बढ़िया वहां राजमहल बना दिया, सारे खजाने भिजवा दिए, सारी व्यवस्थाएं करवा ली, आप चाहे इस पार रहो चाहे नदी के उस पार जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भगवान ने भी हम लोगों को राजा